सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: भगवती श्री दुर्गा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। ये ही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी, दक्ष कन्या सती तथा दुर्गतिनाशिनी दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवती श्री दुर्गा के आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग अत्यंत दुखी हो गए। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। प्रजा के महान दुखों को देखकर सभी देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने भगवती से कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। सभी लोग अकाल पड़ने से भोजन और पानी के अभाव में चेतनाहीन हो रहे हैं। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची है। माँ, जैसे आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज, मधु कैटब तथा महिष आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की थी, वैसे ही दुर्गमासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया। तदनंतर पराम्बा भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी की इस कृपा से देवता और मनुष्यों सहित सभी प्राणी तृप्त हो गए। उसके बाद देवी ने देवताओं से पूछा, अब मैं तुम लोगों का और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवताओं ने कहा, माँ, जैसे आपने समस्त विश्व पर आए अनावृष्टि के संकट को हटाकर सबके प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर और उसके द्वारा अपहित वेदों को लाकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने एवं अस्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने स्थानों को लौट गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का ज्ञान हुआ, तब उसने अपनी आसुरी सेना को लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी माँ ने देवताओं को बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर अपनी तेजो मंडली की एक चार दीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे के बाहर आ डटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और माताडी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली और असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुईं। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका दुर्गा नाम प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम हैं। दुर्गतिनाशिनी होने के कारण भी वे दुर्गा कहलाती हैं।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: श्रोतागण सुप्रभात, प्रणाम। अभी बज गयी बा सुबह के 6 बजते ही हाजिर बाड़ी राउ रेडियो दोस्त दीपाली। आज स्वागत करतारी रउआ सब के आपन प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। दोस्त लोग, हर रोज की तरह आज भी हमरा पास बा बहुत सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, जैसे राउ स्वास्थ्य के साथ ही साथ सौंदर्य भी निखरी। चलिए आगाज किए जाओ आज के शो के, जिमे हम बताए सबसे पहले खीरा के असरकारी नुस्खा के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार खीरा स्वादिष्ट, शीतल, प्यास, दाह पित्त और रक्त पित्त दूर करे वाला रक्त विकार नाशक है। एकर औषधीय लाभ ई प्रकार है कि एक कब्ज दूर करेला, पीलिया, ज्वर, प्यास, शरीर के जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन, अजीर्ण व एसिडिटी में फायदेमंद होला। मोटापा से परेशान लोग सलाद के रूप में एकर प्रयोग करे तो लाभ हुई, इसे गुर्दा की समस्या दूर हो सकेला। की स्थिति में एकर सेवन करे से भूख बढ़ेला। खीरा के टुकड़ा आँख पर रखे से आँख के नीचे के कालापन दूर होला। खीरा के रस में नींबू मलाई मिला के लगावे से चेहरा के रंग निखरेला। तो दोस्त लोग, चली आप जानल जाओ आँख में खुजली होके पर का करे के चाहिए। दारू हल्दी 25 ग्राम, शुद्ध मधु 25 ग्राम और तुथ्य भस्म 1 रत्ती। पहले 1 लीटर पानी में दारू हल्दी के डाल के यथाविधि क्वाथ बनाई। आधा शेष रह जाए पर एक उतार के साफ कपड़ा से छान ली। फिर एक क्वाथ में शुद्ध शहद मिला के फिल्टर पेपर से छान के शीशी में भर के रख ली। ऊपर से एमे तुथ्य भस्म के मिला दी। ई नेत्र विकार खातिर उत्तम अंजन है। एक विधि ई प्रकार है कि दो दो बूंद रोगी के नेत्र में दिन में 2 से 3 बार डाली। ई प्रयोग से आँख के खुजली, आँख से पानी बहल, नेत्र लालिमा आदि विभिन्न नेत्र रोग में लाभ होला। गुलाबी फिटकरी आधा ग्राम गुलाब अर्क 40 मिलीलीटर में डाल के 3-3 बूंद आँख में 3 बार डाली और कनपट्टी पर गीला चूना के 1 इंच लेप कर दी। नीम के उबाली आ ओ पानी से नेत्र धोई। दोस्त लोग, आँख शरीर के सबसे नाजुक अंग होला, अतः ये सब कोनो उपयोग करे से पहले अपना निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य ली। चलिए अब हम बता दी सुंदर और स्वस्थ आँख खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। खूबसूरत और स्वस्थ आँख खातिर कुछ नुस्खा के खाली पेट सेवन करी, जैसे आधा चम्मच मक्खन, अमूल मक्खन भी ले सकता नी। आधा चम्मच पीसल मिश्री और ये थोड़ा सा पीसल काली मिर्च स्वाद के अनुसार मात्र में लेके ये तीनों के मिला ली और ये चाट ली। इकरे बाद कच्चा नारियल के 2-2 टुकड़ा खूब अच्छा तरह चबा के खा ली। अब थोड़ा सा सौंफ मुंह में डाल ली, एके आधा घंटा तक मुंह में रख के चबाते चूसते रहे। एकरा बाद एके निगल जाए। प्रतिदिन भोजन के साथ 50 से 100 ग्राम मात्रा में पत्ता गोभी के पत्ता बारीक कतर के ए पर पीसल होकर सेंधा नमक और काली मिर्च बुरक के खूब चबा चबा कर खाएं। जब गाजर उपलब्ध हो के तब प्रतिदिन 1-2 गाजर खूब चबा चबा के खाएं या एके रस निकाल के भोजन के घंटा भर बाद पी जाएं। ग्लास साफ ताजा पानी में नींबू के 5 से 6 बूंद टपका के ये पानी से प्रातः आँख धोवल करी। प्रातः 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 ग्लास पानी में डाल के घोल ली और ये ढक के रख दी। रात के सोते से पहले ये पानी के कपड़ा से छान ली और ये अपन आँख ऐसे धोई। समय ये दोनों प्रयोग करे के बाद आँख पर ठंडा पानी के पट्टी रख के 10 मिनट लेटल रही। ये दोनों प्रयोग सुबह शाम रोजाना कम से कम 6 माह लगातार करी। रोज ना कर सकता नहीं तो 1 दिन छोड़ के या सप्ताह में 2 बार अवश्य करी। अपना आहार में पत्ता गोभी, गाजर, आंवला, पाकल लाल टमाटर, हरा धनिया, सलाद, केला, संतरा, छुहारा, हरी शाक सब्जी, दूध, मक्खन, मलाई, पाकल आम आदि में से जौन जौन के सेवन कर सके तब प्रतिदिन उचित मात्रा में अवश्य सेवन करें। घर में बनल काजल रात में सोते समय आँख में लगावे के चाहिए और सुबह गीला कपड़ा से आँख के पोंछ के साफ कर ले। और ये सब करते वक्त चेतावनी ये रखे के बाद कि आँख शरीर के सबसे नाजुक अंग होला, अतः कोनो भी प्रयोग अमल में लावे से पहले अपना निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य ले।

0: 15 से 20 मिनट टहल करें। गर्मी के दिन में एक दिन छोड़ के पैर के तलवा में मेहंदी के लेप करी, शुद्ध घी के मालिश भी कर सकता नहीं। एक दिन मेहंदी लगाई, दूसरे दिन शुद्ध घी लगा के तलवा की मालिश करी। आँख के चारों तरफ कोनो क्रीम या सरसों के तेल लगा के मालिश करी। ककड़ी या आलू के गोल काट के पतला स्लाइस आँख पर रखी। आँख के चारों ओर आलू के रस लगाई तो आँख दुखे व जलन में आराम मिली। बर्फ के पानी के फोहा बना के या दूध के फोहा बना के आँख पर रखे से भी आँख दर्द, आँख के आसपास कलापन आदि में आराम मिलेला। गुलाब जल के कोनो ठंडा जगह या फ्रिज में रख के एक फाहा बना के आँख पर रखी। आँख में दो दो बूंद गुलाब जल डाली, बहुत आराम मिली। ऐसे इतना नियम के पालन कमजोर आँख और चश्मा लगावे वाला के तक करे के ही चाहिए, बल्कि स्वस्थ आँख वाला भी जितना बन सके एक ही नियम के पालन करे तो आँख की ज्योति कमजोर ना हुई। और ये चश्मा लागे की नौबत ना आई, ये नियम के नियमित रूप से पालन करते हुए खटाई, लाल मिर्च, तेज मिर्च मसालेदार व्यंजन के सेवन ना करे। ऐसे 5 से 6 माह में ही अशातीत लाभ नजर आवे लगी। ये सब प्रयोग कोनो भी आयु वाला लोग कर सकता। तो दोस्तों अब उस समय आ गई बा जेमे दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। ता हंसी खुशी के साथ अपन दोस्त दीपाली के दी जाए के विदा। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
1: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर
2: फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
8: क्या आपने एक बात पे ध्यान दिया? कृष्ण बहुत आगे की सोचते थे, इसीलिए वो बलराम के मन की टोह ले रहे थे कि कल जरूरत पड़ने पर वो किस करवट बैठेंगे। क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था तो पांडव उनकी बुआ के बेटे। मैंने महाभारत के इन दोनों भाइयों को बहुत करीब से देखा है। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिनसे कुछ नहीं छिपता। मैंने देखा है कि बलराम का अपना तर्क था पर कृष्ण धर्म के साथ थे। जब कृष्ण पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बसाने गए थे तब भी उन्हें बलराम का विरोध झेलना पड़ा था।
9: इस उजाड़ खांडव वन में ऐसा क्या है कृष्ण जो तुम यहाँ महल बनाना चाहते हो? सूखी बंजर भूमि, कहीं चट्टाने हैं तो कहीं खाइयां, यहाँ नगर कैसे बसेगा?
10: मैं भी यही सोच रहा था दाऊ, पर कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर में तो रहने नहीं देगा, तो पांडवों को वहीं बसना पड़ेगा जहां वो चाहे। हाँ, यदि आप दुर्योधन से कहे तो हो सकता है कि वो पांडवों पर कुछ कृपा कर दे।
9: बार बार एक ही बात दोहराने का कोई अर्थ नहीं कृष्ण, महर्षि व्यास बहुत अनुभवी हैं, वो अवश्य कोई सलाह देंगे।
11: नहीं बलराम, कृष्ण को किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने संसार के श्रेष्ठ वास्तुविद को पहले ही बुला लिया है। देखिए, वास्तुज्ञाता विश्वकर्मा स्वयं यहाँ पहुंच चुके हैं।
12: मैंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, देवी पांचाली ने खांडव वन में नगर बसाने की कितनी सुंदर कल्पना की है।
13: मेरे मन में तो बस एक सुंदर कल्पना है, प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर नगर, जिसके झरोखों से देखने पर कल कल बहती गंगा की धारा के साथ पक्षियों का गुंजन कानों में रस घोल जाए।
10: वाह कृष्णा, और बताओ कृष्णा, और क्या सोचा है तुमने?
13: मैं बताती ही रहूंगी या कभी ऐसा होगा भी?
10: जब विश्वकर्मा स्वयं यहाँ आए हैं तो तुम्हारी कल्पना अवश्य साकार होगी कृष्णा। तुम बताओ तो सही, कैसा होना चाहिए तुम्हारे सपनों का नगर?
13: मेरे मन में कामपिल्ले जैसा एक राजभवन बसा हुआ है केशव, एक विशाल भवन जिसमें भवन के अंदर प्रकृति के दर्शन हो और प्रकृति में भवन निर्माण की झलक दिखे।
10: ऐसा ही होगा कृष्णा। ऋषि विश्वकर्मा, आपने कृष्णा की बातें सुन ली? यदि ऐसा संभव नहीं भी है तो भी आप इसे संभव करें, क्योंकि आज वर्षों बाद कृष्णा ने एक राजभवन की कल्पना की है।
13: इस कल्पना के पीछे भी आप ही हैं केशव, आप नहीं होते तो शायद मैं अपने मन की बात कह भी नहीं पाती।
12: श्री कृष्ण, नगर की मेरी कल्पना पांचाली की परिकल्पना की छाया ही होगी।
10: सुन लिया कृष्णा, इंद्रप्रस्थ की तुम्हारी कल्पना अवश्य साकार होगी।
14: देव विश्वकर्मा, नगर के एकांत में एक सुंदर गुरुकुल अवश्य होना चाहिए और उसके साथ एक तप स्थल भी,
11: और वहाँ शस्त्र अभ्यास का उचित प्रबंध तो होना ही चाहिए देव, विशेष रूप से गदा अभ्यास के लिए एक विशाल अखाड़ा।
15: मैं चाहता हूँ कि महर्षि धौम्य के आश्रम और ज्येष्ठ की तपोस्थली के पास ही एक युद्धशाला हो और सैनिकों के लिए धनुर्विद्या के अभ्यास की अलग व्यवस्था हो।
12: आप सबकी भावनाओं का सम्मान होगा।
16: कुमार, कुमार दुर्योधन,
17: पहल तुम, तुम्हें तो खांडव क्षेत्र में होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे?
16: खांडव क्षेत्र की सूचना लाया हूँ कुमार, पूरे क्षेत्र को युद्ध भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुमार भवनों से अधिक शस्त्र भंडार बनाए जा रहे हैं वहाँ।
17: पर यह संभव कार्य हुआ कैसे?
16: श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया है, देवी पांचाली स्वयं भवन बनवा रही है और श्री कृष्ण शस्त्र भंडार।
17: कहीं वो मुझ पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते?
16: ये तो मैं नहीं कह सकता कुमार, पर उनके मन में कुछ तो चल रहा है।
17: तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना पहल?
16: नहीं नहीं नहीं युवराज, मैंने जो देखा सुना वही बता रहा हूँ।
17: यदि तेरी सूचना झूठी हुई तो तेरा ये सर तेरे कंधों पर नहीं रहेगा।
16: जी युवराज,
17: तो अब खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहा है? जा यहां से, जा।
16: ठीक है युवराज।
17: पांडु पुत्रों, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है सामने तो अवश्य आएगा, और याद रखना, यदि तुमने दुर्योधन पर घात किया तो एक बार तो बच गए पर बार बार नहीं बचोगे।
9: खांडवन को स्वर्ग बना दो कृष्ण, मुझे कुछ नहीं कहना है, बस दुर्योधन की भावनाओं का ध्यान रखना, कहीं उसे बुरा ना लगे।
18: दुर्योधन ने पांडवों की भावनाओं का तो कभी ध्यान नहीं रखा था, आप उसके संबंध में इतना क्यों सोच रहे हो?
9: वो बहुत संवेदनशील है कृष्ण, हो सकता है उस

0: पिता को जन्म देती है।
1: तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं कोई अबोध बालक हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुमसे अधिक समझता हूँ।
0: मैं जानता हूँ दाऊ, मुझे कितना भी ज्ञान हो जाए आपसे कम ही होगा। और दुर्योधन को तो आपने गदा युद्ध का इतना अभ्यास करा दिया है कि वो अपने जीवन का कोई भी निर्णय गदा के बल पर ही कर लेगा।
2: प्रहार करो दुर्योधन, प्रहार करो।
3: नहीं गुरुदेव, नहीं, क्षमा करें, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता।
2: करना होगा दुर्योधन, ये तुम्हारी परीक्षा है। चलो आगे बढ़ो, प्रहार करो।
0: आपने तो दुर्योधन से कहा भी है कि उसकी गदा के सामने कोई नहीं ठहर सकता।
1: उसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तो कौन देगा कृष्ण? और मैं भीम का भी तो गुरु हूँ, मैंने उसे भी तो आशीर्वाद दिया है।
4: दाऊ बलराम की जय।
1: लो भीम आ भी गया।
4: आपने जो दांव सिखाए हैं वो अद्भुत है दाऊ, पर अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है।
1: अवश्य भीम, अभी तो तुमने आरंभ किया है। मैं तुम्हें आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहता हूँ।
0: आप आर्यवर्त में दो महायोद्धा तैयार कर रहे हैं दाऊ।
1: मैं शिष्यों में कोई भेद नहीं करता कृष्ण, मैं चाहता हूँ मेरे दोनों शिष्य एक जैसे ही हो। और तुम ही तो कहते हो ना कि बिना समानता के प्रेम नहीं होता।
5: महाभारत युद्ध की नींव अभी से पड़ने लगी थी। केवल कृष्ण और बलराम ही नहीं बट रहे थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच भी दोस्तों का बंटवारा शुरू हो चुका था। और ये बंटवारा भीष्म की सबसे बड़ी चिंता थी।
6: किस समानता की बात कर रहे हो धृतराष्ट्र? यदि समानता की सोचते तो आज कुरु राज्य खंडित नहीं हुआ होता और पांडवों को अपना अलग नगर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पर दुख है कि तुमने कभी इस बंटवारे की पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया।
7: मेरे पास और कोई उपाय नहीं था तात, मैं चाहकर भी इस विभाजन को नहीं रोक सकता था।
6: रोक सकते थे धृतराष्ट्र, तुम रोक सकते थे, पर तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। तुमने अपनी नहीं अपने पुत्रों के मन की सुनी, और तुम्हारे निरंकुश पुत्र कभी पांडवों को सहन ही नहीं कर सके।
7: नहीं तात, नहीं।
6: मैं यहाँ तुम्हारे खोखले तर्क सुनने नहीं आया हूँ धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने पक्षपात किया है और तुम्हारे पुत्रों ने मनमानी, जिसका परिणाम एक दिन तुम्हें ही पीड़ा देगा। तुमने वैर का तो बीज बोया है, याद रखना वो एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा।
7: पर तात, ये केवल मेरा निर्णय नहीं था।
6: तुम्हारा ना सही पर दुर्योधन का निर्णय तो था, पर तुम ये भूल गए कि केवल कौरवों और पांडवों का नहीं, हस्तिनापुर की प्रजा का भी बंटवारा है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जैसे तुम्हारी प्रजा खांडव वन की ओर बढ़ रही है, यदि वाहलीक, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जैसे महात्मा भी पांडवों के क्षेत्र में चले जाएं तो क्या होगा?
7: हे ईश्वर, मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो और भाग सा नोचो। पितामह पांडवों का पक्ष तो ले सकते हैं पर उनके लिए लड़ नहीं सकते। वो लड़ेंगे तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम शुद्ध कुरुवंशी हो, तुम्हारी रगों में कुरुवंश का रक्त दौड़ रहा है और कुरुवंश की रक्षा पितामह की सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे सबड़ी

0: दुर्बलता है सबसे बड़ी।
1: आपके स्पर्श में जाने कैसा जादू है पार्थ, कि मैं स्वयं को रोकने की कितनी भी कोशिश करूं पर आखिर में दहक ही जाती हूं।
2: मैं तुम्हारे मुख पर संसार का सारा सुख देखना चाहता हूं पांचाली, पर तुम हो कि बार बार हस्तिनापुर के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती हो।
1: पर मैं भी क्या करूं, सच यही है, भले ही हमारे संघर्षों का अंत हो रहा हो पर हस्तिनापुर की यादें मन को छील सा देती हैं।
2: हाँ, पीड़ा मेरे मन में भी है पांचाली, पर तुम्हारा साथ उस पर ठंडी औषधि जैसा होता है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी पीड़ा हर लेती है।
1: और आपके प्रेम में भीगे हुए बोल मुझे उस वीणा में बदल देते हैं जिसके तारों को आपकी उंगलियों का स्पर्श मिल गया हो।
2: अच्छा
1: पर एक बात कहूं पार्थ, जब आप मेरे साथ होते हैं ना तब अपनी इस गांडीव को कहीं और छोड़ाया कीजिए।
2: क्यों?
1: कि मुझे मेरी सौत जैसा लगता है।
2: मेरे लिए तो ये कामदेव का धनुष है, स्वयंवर में इसी धनुष के कारण तो मैं तुम्हें पा सका था।
1: बस यही, ये जो बाहों में लेने की आपकी कला है ना, बस यही मुझे निरुत्तर कर देती है। पति तो शेष पांडव भी है मेरे, पर आप सबसे अलग है। प्रेम करने की जो कला आप में है पार्थ, वो किसी भी स्त्री का हृदय चुरा सकती है। कभी सोचती हूं कि यदि मुझे आप और कृष्ण ना मिले होते तो मैं कैसे जी पाती।
2: कृष्ण तो लगता है जैसे हर स्थान पर है। देखो, वो अचानक हमारी बातों के बीच में आ गए, जबकि शायद वो इस समय दाऊ के साथ होंगे।
3: वो देखिए दाऊ, उदित होते सूर्यदेव कितने मोहक लग रहे हैं।
4: तुम ही तो सूर्यदेव को पांडवों की इस भूमि पर उतार लाए हो कृष्ण, और सूर्यदेव ही क्यों, तुमने तो यहाँ अपने हाथों से प्रकृति का श्रृंगार किया है।
3: आप भी हमारे साथ ही रहे हैं दाऊ, महर्षि वेद व्यास और विश्वकर्मा का योगदान भी कम नहीं है। ये भव्य प्राचीर, सुंदर सजे हुए घाट, पुष्पों की क्यारियां और विशाल नगर द्वार, ये सब तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है।
4: मुझे एक आशंका है कृष्ण, कहीं ये सब तुमने दुर्योधन को दिखाने के लिए तो नहीं किया।
3: आप भी ना दाऊ।
5: आज तक कृष्ण जैसा पॉलिसी मेकर और फिलोसोफर कोई नहीं हुआ। जहां तक पांडवों की कल्पना नहीं पहुंच पा रही थी, कृष्ण उससे बहुत आगे की सोच रहे थे, उससे भी आगे जहां तक शकुनी सोच सकता था। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद राजसूय यज्ञ करके जहां वो पांडवों को शक्तिशाली बना रहे थे, वहीं अपने पुराने शत्रुओं का हिसाब किताब भी बराबर करने जा रहे थे। सुनते रहिए।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
12: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से शुरू हुआ शारदीय नवरात्रि का त्योहार। नेपाल के रास्ते गंडक नदी में फिर हो सकती है जलस्तर की वृद्धि। पेंशन धारियों के खाते में सरकार ने भेजी राशि। HIV के प्रति जागरूकता रैली को किया गया रवाना। और फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या तथा विदेश में हो गई एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज से पूरे धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया। इस दौरान थावे माँ भवानी के दरबार और लछवार माता के मंदिर सहित जिले के तमाम शक्ति पीठों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही माँ की पूजा और आराधना के लिए उमड़ पड़ी थी। साथ ही जिले के सभी पंडालों में भी आज कलश स्थापन के साथ माता की पूजा आराधना शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। धारदार हथियारों की बिक्री पर सभी जगहों पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर अलग अलग थानाध्यक्षों और अंचलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में दुकानों की जांच अभियान भी शुरू किया। इस दौरान कई दुकानदारों के यहां से चाकू, छुरी, भाला, तलवार और फाइटर जैसे घातक हथियारों की बिक्री नहीं करने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने प्रतिबंधित हथियारों को तत्काल दुकानों से हटाने की चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज थावे माँ भवानी के दरबार में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने पूजा आराधना करते हुए जिले वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही दोनों अधिकारियों ने गोपालगंज वासियों को शारदीय नवरात्रि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान थावे माँ भवानी के परिसर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
13: दुर्गा पूजा से एक शुरू होने के एक दिन पहले हम लोग थावे मंदिर दुर्गा माँ के दर्शन करने आए थे और साथ ही यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेने आए थे। तो जो यहाँ पर पहले व्यवस्थाएं होती थी उसके तुलना में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। आने और जाने का दोनों मार्ग पृथक है पूरी तरह, कहीं कोई चौक पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए तय पार्किंग है, फोर व्हीलर पार्किंग अलग है, टू व्हीलर पार्किंग अलग है, होमगार्ड ग्राउंड की पार्किंग अलग है और हर जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग सेपरेट रूट से आएँ और सेपरेट रूट से जाएँ। सफिशिएंट संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट की भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही भीड़ होती है, इसलिए सुबह 2 बजे से ही हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और सारे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे ताकि जो श्रद्धालु 3 बजे से आना चालू करते हैं उनको किसी तरह की समस्याएँ ना हों। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसके आलोक में प्रॉपर स्टील बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिगजैग लगा हुआ है जिससे लोग आएंगे जाएंगे, तो एंट्री एग्जिट का मार्ग सेपरेट है। आसपास और भी मंदिर हैं, रसू मंदिर है, लक्षवार मंदिर है, थावे जंक्शन है जहाँ से यात्री आते जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। हम लोगों को, पूरे जिलावासियों को और सभी गोपालगंज के निवासियों को जो बाहर रहते हैं उनको भी, हम जिला प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से, गोपालगंज पुलिस की तरफ से नवदुर्गा की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि त्यौहार हर्षोल्लास से सभी लोग मना पाएं और किसी तरह की कोई समस्या किसी को ना
14: हो। के 10वीं तक लगातार भीड़ रहेगी यहाँ और खास करके सप्तमी, अष्टमी और नवमी को सुबह 3 बजे से ही भीड़ लग जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, नए नए रास्ते बन गए हैं, तो हम लोग प्रॉपर साइनेजेस के साथ लोगों का एंट्री एग्जिट कंट्रोल रखेंगे। लोगों को सब जगह साइनेजेस और जो फ्लेक्स में लिखा रहेगा कि इधर से जाना है ताकि लोगों को सहूलियत हो, एक बार आ जाएं मंदिर में दर्शन करके जाएं और निकलते समय एग्जिट का रास्ता जो है सीधे उनको थावे का गोलंबर जो है वहां पर लेकर के चला जाएगा, फिर वहां से वो अपने अपने गाड़ियों के माध्यम से या पैदल या ट्रेन के माध्यम से फिर आगे चले जाएंगे। तो डिटेल्ड हम लोग जो है साइनेजेस रखेंगे ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन भी, डेपुटेशन पॉइंट्स सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। SP साहब अभी हम लोग घूम घूम के सारा डेपुटेशन पॉइंट भी देख लिए हैं और फोर्स मजिस्ट्रेट पर्याप्त रहेंगे ताकि लोगों को लगातार जो है उनका मूवमेंट बना रहे और किसी तरीके की समस्या ना हो। ये प्रोजेक्ट का ही पार्ट था जो यहाँ पे अभी ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसी में स्टील का बैरिकेडिंग भी लगाया गया है और उसको थोड़ा और हम लोग बढ़ा रहे हैं और आगे की तरफ जहाँ, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस आगे की तरफ हम लोग जो है टेम्प्ररी बैरिकेडिंग भी कर रहे हैं ताकि एंट्री एग्जिट हमारा कंट्रोल रहे।
12: जिला प्रशासन ने नेपाल के रास्ते फिर से गंडक नदी में जलस्तर के वृद्धि होने की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि नेपाल स्थित गोरखा जिले के चुननुब्री क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिसके वजह से जलस्तर में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना नेपाल सरकार ने दी है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार जिला प्रशासन ने बताया है कि इसका भारतीय क्षेत्र विशेषकर गोपालगंज जिले में प्रभाव नगण्य रहने की संभावना है। प्राप्त सूचना के अनुसार वाल्मीकि नगर बैराज पर जलस्त्राव में लगभग 20,000 क्यूसेक के वृद्धि की संभावना है और नदी में लगभग 50,000 क्यूसेक सामान्य रूप से पानी आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्थिति पर सतर्कता पूर्वक निगरानी रखने की बात भी कही है। HIV एड्स के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समाहरणालय से जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को HIV संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों, समय पर जांच तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने को लेकर जागरूक किया। जिलाधिकारी ने सुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करने से बचने तथा सुरक्षित रक्त चढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की HIV जांच को आवश्यक बताते हुए संक्रमण की समय समय पर पहचान और रोकथाम के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की। साथ ही HIV और एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से पेंशन की राशि आंतरित कर दी। इस अवसर पर गोपालगंज के समाहरणालय सभा कक्ष में भी जिलाधिकारी समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार उपस्थित रहे। जिले के कुल 2,88,575 लाभुकों के लिए लगभग 31.74 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,73,95,000, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 47,38,000 और विधवा पेंशन योजना के 19,258 तथा निःशक्तता पेंशन योजना के 22,641 और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 23,971 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 2,572 लाभुक शामिल हैं। नवरात्रि के पहले दिन जैसे ही लाभुकों के खाते में यह राशि आई, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और नवरात्रि में लोग इस राशि से अपना त्योहार उत्साह पूर्वक मना सकेंगे। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अमोद कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर थावे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विभा कुमारी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस हालांकि हत्या, आत्महत्या जैसे सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और इसको लेकर अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक अनुसंधान करने के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। मीरगंज थाना की पुलिस ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त सहजीद अली पिता अख्तर अली साकिन लाइन बाजार थाना मीरगंज को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पहले से वादी के द्वारा बाजार से घर लौटते समय मारपीट करने, घर पर पताका लगाने को लेकर विवाद करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने का केस दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हथुआ थाना क्षेत्र के महेश चंद चौधरी जो विदेश में रहते थे, बताया जा रहा है कि बहरीन में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो परिवार जनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि ये हथुआ बुजुर्ग यानी छोटका हथुआ गांव के रहने वाले थे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विदेश के बहरीन में काम करने गए थे और वहीं हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। आज वहां से इनका शव उनके गांव हथुआ बुजुर्ग यानी छोटका हथुआ देर शाम को पहुंचा तो पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। दुर्गा पूजा को लेकर सभी जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों को दंडाधिकारियों के साथ तैनात किया गया है। साथ ही सभी चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर स्थिति का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचका गांव का औचक निरीक्षण किया। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने पर्ची काउंटर पर मरीजों से बातचीत की, पंजीकरण एवं इलाज में होने वाली परेशानियों की जानकारी ली, दवा वितरण काउंटर पर उपलब्ध दवाओं और उनकी एक्सपायरी तिथि की भी जांच की। साथ ही अस्पताल के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के सफल और सुचारू संचालन को लेकर जिला परिषद सभागार में मतदान दल के पदाधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हुए। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और प्रावधानों के अनुरूप मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया, मतदान पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों तथा विभिन्न प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर के रूप में श्री जितेंद्र पांडे, मोहम्मद अली शेर एवं अरविंद कुमार ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर प्रभारी जीआरपी थानाध्यक्ष दुर्गा यादव के नेतृत्व में पुलिस ने ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान 18 लीटर देशी शराब और 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए घर से निकली एक नाबालिग किशोरी लापता हो गई है। इस मामले में किशोरी के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों में चिंता का माहौल है। काफी खोजबीन के बाद भी अब सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि 6 सितंबर को किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, काफी देर बाद वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन कर किशोरी का पता लगाने का प्रयास किया गया, परंतु किशोरी नहीं मिली। अब पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से शुरू हुआ शारदीय नवरात्रि का त्योहार। नेपाल के रास्ते गंडक नदी में फिर हो सकती है जलस्तर की वृद्धि। पेंशन धारियों के खाते में सरकार ने भेजी राशि। HIV के प्रति जागरूकता रैली को किया गया रवाना। और फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या तथा विदेश में हो गई एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
15: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
15: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
15: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
15: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को नमन है, प्रणाम है। शनिवार के दिन पितृपक्ष महल्या समाप्त हुआ। सभी लोगों ने अपने पूर्वजों को, पुरखों को याद किया, विधि सम्मत मांगलिक कार्य किया। उसके उपरांत आज रविवार है, नवरात्रि का महापर्व जो है शुरू हो गया। पूरे रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आपके जीवन में समृद्धि हो, खुशहाली हो और पारिवारिक एकता बनी रहे, यही कामना हम करते हैं। यह बड़ा ही पवित्र और शुभ महीना चल रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार में खुशी, उत्साह और मंत्र उच्चारण के साथ एक खुशमय वातावरण बना हुआ है पूरे समाज में। हमें इस नवरात्रि को, इस दशहरा को पूरे उत्साह के साथ मनाना है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम अपने कार्यक्रम के माध्यम से माँ दुर्गा का स्तुति करता है, मंगलमय गान करता है और चाहता है कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनके जीवन में लाभ ही लाभ हो, मंगलमय कार्य हो और वह अपने कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते रहें। रेडियो रिमझिम।

कार्य संपादित होते रहे। रेडियो रिमझिम का लोकप्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला पिछले कई वर्षों से इसका प्रसारण हो रहा है और हमारे आदरणीय श्रोता बंधु इसमें अपनी मन की बातें, दिल की बातें, अपनी स्थानीय समस्या लिख कर भेजते हैं। हम अपने प्रसारण के माध्यम से प्रत्येक श्रोता के जीवन में उत्साह और खुशी भरना चाहते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, यदि चीनी है तो सबको मीठा लगेगा, यदि नमकीन पानी है तो सबको नमकीन लगेगा। जीवन का एक यह रहस्य है, अच्छी बातें, अच्छी सोच हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रेरणा देता है। रेडियो रिमझिम सुबह 5 बजे से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करता है और रात को 11:10 पर अपना कार्यक्रम केवल रेडियो पर स्थगित करता है, जबकि रेडियो रिमझिम का जो ऐप है उसके माध्यम से 24 घंटे हम अपने प्रसारण को जारी रखते हैं, ताकि कोई इंटरनेट से, वाहन से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, ऐप से हमें सुनना चाहे अपने समय के मुताबिक वह सुनते रहे। आपका संदेश मिला सभी कार्यक्रमों का एक लेखा जोखा यह अंक है, जिसमें आप अपनी बातों को रखते हैं, हम अपनी बातों को रखते हैं और दोनों को समायोजित कर हम आगे का कार्यक्रम बनाते हैं। रेडियो रिमझिम का मानना है कि हम लोग जो आपकी सेवा दे रहे हैं, हम सेवक हैं और आप यदि हमें सुनते हैं तो आप हमारे श्रोता हैं, हमारे संदेश वाहक हैं और जो इस बात को ओबलाइज करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, समाज के सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग जो है रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, चाहे वह युवा हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग पसंद करते हैं। अभी हाल में ही 3 महीने तक भारत सरकार का एक सर्वे टीम आया था, जो रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर की आवृत्ति में, रेडियस में लोगों से मिला, बातें किया, उनका तस्वीर लिया और भारत सरकार के पास यह संदेश भेज दिया कि रेडियो रिमझिम को कितने लोग सुनते हैं। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप जिस गांव में जाएं, जो तस्वीर आप लेते हैं, कुछ तस्वीर हमारे साथ भी शेयर करें, हमें भी दें, ताकि हमें भी पता चले कि किस गांव में कौन लोग सुनते हैं। चूंकि वह टीम जो है इसे गोपनीय रखना चाहती थी, लेकिन मेरे बार बार निवेदन पर कुछ तस्वीर, सब तो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ तस्वीर हमको जो मिला उसे देखकर मैं अभिभूत हुआ और मेरे मन में काम करने का उत्साह जो है और बढ़ गया। हमारे साथ जो युवा टीम है वे सभी लोग अपने कामों को बड़े ही अच्छे ढंग से निरंतर करने का प्रयास करते हैं। मेरा यह मानना है कि हमसे भी चूक होती है, हमसे भी भूल होती है। कई बार हम बोलते समय स्त्रीलिंग पुल्लिंग या एक वचन बहुवचन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, चूंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, रोज भोजपुरी बोलना,

हम जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि सर्वे टीम के साथ वैसे सभी लोगों ने सहयोग किया, आदर किया, लेकिन जो तस्वीर रेडियो रिमझिम को मिला है उन लोगों से मैं खुद मिलूंगा। यह दशहरा और बीत जाने दीजिए, थोड़ा और ठंडक बढ़ जाने दीजिए, उस समय रेडियो रिमझिम के सर्वे टीम द्वारा जो तस्वीर और नाम दिए गए हैं छोटा सा, मैं उन लोगों से जरूर मिलना चाहूँगा। वैसे तो 15 किलोमीटर के रेडियस में लाखों लोग रहते हैं, वह 25 आदमी का टीम था, प्रतिदिन किसी न किसी गांव में जाता था, तस्वीर लेता था, लोगों से बात करता था, उसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, सबसे वे लोग बात किए। लेकिन जो तस्वीर हमको मिला है उसमें जो है 5-7 व्यक्ति का तस्वीर मिला है, और आगे भी यदि मिलता है तो मैं उन लोगों से जरूर मिलना चाहूँगा, उनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा, और उनको हृदय से हम नमन करना चाहेंगे कि आप लोगों ने रेडियो रिमझिम का मान शान बढ़ाया है और सर्वे टीम को जो है काफी सहयोग दिया है। जैसे गोपालगंज सदर ब्लॉक के गांव डुमरिया के श्री नवल किशोर तिवारी जी ने अपने रेडियो के साथ एक फोटो जो है सर्वे टीम के साथ खिंचवाया है। उसी तरह गांव धामा पाकड़ के श्री धर्मराज सिंह जी के घर वह टीम गया, उनका भी फोटो हमें देखने के लिए मिला है। उसी तरह गांव डुमरिया के महुआ टोला के श्री कपिल देव शर्मा जी जो रेडियो रिमझिम के श्रोता हैं, उनका भी तस्वीर हमें देखने को मिला। कोनवा डुमरिया गांव के श्री शिव बचन महतो जी जो अपने झोपड़ी में बैठकर रेडियो को सुनते हैं, उनके झोपड़ी सहित हमें फोटो मिला। इसी तरह ओलीपुर के श्री राजेंद्र सिंह जी का तस्वीर और मकान का एक तस्वीर हमको मिला। उसी तरह नवाब मियाँ जी जो जागीरी टोला में रहते हैं, अपने छोटे से मकान में रेडियो रिमझिम को सुनते रहते हैं, अपनी दिल की बात समझते हैं। इसी तरह देवापुर आशा रावत का टोला के श्री रामदेनी सिंह जी का एक तस्वीर रेडियो रिमझिम को मिला है, जो अपने मकान में रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। इसी तरह गोपालगंज पोस्ट ऑफिस के पास एक चाय दुकान है, जिसमें श्री शिवजी शाह जी रेडियो रिमझिम को बजाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसके अलावा गोपालगंज मिंज स्टेडियम के बगल के श्री अशोक कुमार सिन्हा जी का तस्वीर मिला है, जो सुबह से शाम तक रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। इसी तरह अमेठी कला के शिव बचन माझी जी का तस्वीर मिला है, जो रेडियो को सुनते हैं। इसके अलावा श्री ददन माझी जी का एक तस्वीर मिला है, जो अमेठी कला गांव में रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। गफार मियाँ जी का मिला है, जो अमेठी कला गांव में रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। श्री नवाब मियाँ जी जागीरी टोला में मिला है, जो रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। वैसे और बहुत सारा नाम है, सबसे पहले जिन लोगों का नाम हमने रखा है उन्हें मैं खड़ा होकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप ही लोग के बदौलत रेडियो रिमझिम राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अच्छी ख्याति अर्जित की है। आप हमें सुनते हैं, यही हमारी पहचान है, और यदि हमारे कार्यक्रमों में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग किसी न किसी माध्यम से हम तक अपनी बातों को पहुंचाइएगा। आज रेडियो के माध्यम से हम कहेंगे कि ठंडे के समय में जब जाड़ा शुरू हो रहा है,
उस समय हम आप लोगों से मिलेंगे।

0: आपका 5 मिनट समय लेंगे और आपको प्रति हम अपनी आदर को व्यक्त करेंगे। वैसे हमारे साथ सोनू जी भी बैठे हैं, बता रहे हैं कि समय जो है कम है और संदेश काफी है, तो हम लोग इस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में आते हैं और सोनू जी जो संदेश पढ़ेंगे उसका जवाब जो है पूरी ईमानदारी से हम देने का प्रयास करेंगे।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश मेरे पास पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास है अभिमन्यु पांडे जी का, विक्रमपुर से लिखे हुए हैं। पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार को पितृ पक्ष समाप्त हुआ। रेडियो रिमझिम गीत संगीत के माध्यम से पूर्वजों का आदर किया। हवा महल आकाशवाणी का बहुत पुराना कार्यक्रम है जो आपके द्वारा प्रसारित किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पितृ पक्ष जो है अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को याद करने का मेरे समझ से एक सुनहरा अवसर है। यथा शक्ति तथा भक्ति, कई लोग जो है गया जी में जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, कई लोग जो है अपने घरों में पंडित जी के माध्यम से तर्पण कराते हैं, कई लोग जो है अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह जो है हमें बताता है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज कैसे थे। उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंश और अंश के लिए कौन कौन सा त्याग किया है, यह माह जो है याद दिलाता है और उसी के माध्यम से जो वर्तमान पीढ़ी है आगे बढ़ती है। किसी भी देश का और समाज का इतिहास जो है सजो कर रखा जाता है ताकि ये आने वाला जनरेशन जो है उससे प्रेरणा ले और अच्छे अच्छे कार्यों में अपने जीवन को समर्पित करे। और यह बड़ा ही गर्व का समय होता है पितृपक्ष। आजकल तो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी अखबार के माध्यम से यह भी पता चलता है कि कई विदेशी लोग जो इटली में, अमेरिका में, कनाडा में, रूस में रहते हैं लेकिन पिंडदान करने के लिए गया जी में आते हैं। यह जो है धार्मिक मान्यता के अनुसार गया जी का पिंडदान जो है सफल होता है। वैसे भारत में कई जगह पिंडदान देने की व्यवस्था है। तो पितृपक्ष का समय जो है समाप्त हो चुका है। उसकी कुछ नियम है, कुछ विधियां हैं जिसे लोग अपनाते हैं और मानते हैं। अभिमन्यु पांडे जी, दूसरी बात आपने कहा कि हवा महल कार्यक्रम जो प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है, सच्चाई यह है कि जब हम भी छोटे थे, बच्चे थे, उस समय रेडियो पर हवा महल कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब रहते थे। आकाशवाणी से यह कार्यक्रम आता था तो हमने कहा कि आज के पीढ़ी को भी यह कार्यक्रम सुनाना चाहिए। इसलिए रेडियो रिमझिम प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण करता है जिसमें हंसी है, ठिठोली है, सच्चाइयां है, कुछ अच्छाइयां है, जो अच्छा लगता है। लगातार गीत सुनते सुनते, बीच बीच में एकांकी नाटक, यह सब सुनने से मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और आपके द्वारा इसकी प्रशंसा की गई जो काफी अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि और भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम रेडियो रिमझिम प्रसारित करे। आपने जो मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहित किया, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है रामप्रीत शाह जी का थावे बाजार से। सर नमस्कार, थावे मुख्य सड़क पर मेरा पुणकिया का दुकान है। मैं बीए तक पढ़ा हूँ, रेडियो रिमझिम को अपने दुकान पर बजाता हूँ। मुझे आपका संदेश मिला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, मुझे और क्या करना चाहिए? तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय शाह जी, आपके पूरे परिवार को आस्था का केंद्र थावे बाजार के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब तो दशहरा शुरू हो गया और थावे बाजार में और थावे माँ दुर्गा के मंदिर में काफी भीड़ भाड़ शुरू हो गया है, मेला भी अब शुरू होने वाला है। मैं वहाँ के सभी लोगों को एक बार पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका संदेश जो है हमें प्रेरित करता है कि युवाओं के लिए कुछ कहें। सच्चाई यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीज बदलता है। एक दौर था हम लोगों का जब मैट्रिक इंटर बीए में करने के बाद पूरे क्षेत्र में नाम हो जाता कि फलाना का लड़का जो है मैट्रिक पास किया तो उस समय आठ जाम शुरू हो जाता था। फलाना का बेटा इंजीनियर बना तो उस समय पूरे क्षेत्र में उस व्यक्ति उस परिवार का गौरवशाली इतिहास बन जाता था। तो यह अपने अपने दौर की बात है। मेरे समझ से इंटर बीए एमए के साथ यदि हम कुछ तकनीकी शिक्षा आज के दौर में सीखें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। यदि आपका आपके पूर्वजों द्वारा मिठाई का दुकान किया गया है तो आप उसमें क्वालिटी बढ़ाइए, पैकिंग का तरीका बदलिए, यानी जो काम आपके पूर्वजों द्वारा किया गया है उसी को बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। और दूसरा विकल्प यह है कि पढ़ाई के साथ तकनीकी शिक्षा अनिवार्य है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बीए में पढ़कर हम लोग बेकार हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल का मिस्त्री है तो वह पांच गोर इंच लेकर जहाँ खड़ा होगा वहीं कमाना शुरू कर देगा। यदि कोई घड़ी साज है जहाँ दुकान खोलेगा वहीं पर व्यापार शुरू हो जाएगा। यह दिखाता है कि तकनीकी शिक्षा आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। और आपके पास दो विकल्प हैं, इसमें से मेरा सुझाव है कि कोई एक विकल्प चुनें। आगे आपने बताया है कि आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम अच्छा लगता है, दीवाल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है जिसे हम ध्यान से पढ़ते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाते हैं, अच्छी बात सुनकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं, तभी उसकी सार्थकता होती है। जैसे हम लोग किसी शमशान घाट पर जाते हैं और जितने समय तक धुआं निकलता है, शरीर जलता है, उस समय लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, एक दिन चला जाना है। और जब लौट कर आते हैं हम लोग घर पर तो फिर अपनी दुनियादारी में लग जाते हैं। उसी तरह यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो उसे अपनाना है और परिवार के साथ समाज के साथ साझा भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है ढोड़वलिया कुचायकोट से। नीरा देवी जी का, रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा प्रणाम है। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरा मायके कटिया है। घर का काम पूरा करने के बाद रेडियो रिमझिम को सुनती हूँ और कार्यक्रम से जुड़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गीतों के कार्यक्रम बहुत बहने जुड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय नीरा जी, आपके पूरे परिवार को, ग्राम ढोड़वलिया के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। संयोग यह है कि कटिया की आप बेटी हैं और कुचायकोट प्रखंड में आपकी शादी हुई है। यह अच्छी बात है, आपने अपना परिचय दिया। मेरा मानना है कि रेडियो रिमझिम गीत संगीत के साथ संस्कार और अच्छी अच्छी जानकारियों को अपने श्रोताओं के पास पहुंचाने का निरंतर प्रयास करता है। कई कार्यक्रम हमारे यहाँ हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, कई जो है रिकॉर्डेड कार्यक्रम है जिसमें हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं, जो आरजे हैं, वह आप लोगों से खुलकर बातें करती हैं, आपकी बातों को सुनती हैं और एक दूसरे के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। रेडियो रिमझिम जो है आम जनों की आवाज है, आम जनों की आवाज को पूरे दुनिया में हम पहुंचाते हैं, ऐप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। यानी रेडियो रिमझिम केवल एक सीमित स्थान तक नहीं है। सोशल मीडिया पर आइए, अपने मोबाइल पर आइए, यदि आप उस पर रेडियो रिमझिम लिखिएगा तो इसका सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने स्टूडियो का फोटो, क्षेत्र भ्रमण का फोटो, यानी जो भी गतिविधियां करते हैं वह तस्वीर के साथ रेडियो रिमझिम के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड कर देते हैं। हमारे यहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम जब प्रसारण करते हैं तो कितने लोग हमसे जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं, और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम आपके बातों को समझते हैं, अब आपके सुझावों को मानते हैं और बेहतर प्रसारण का निरंतर प्रयास करते हैं। आपको पता ही है कि दुनिया में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति अपूर्ण है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो रेडियो रिमझिम का मानना है कि यदि हमारे अंदर, हमारे कार्यक्रम के अंदर कोई कमी है तो आप हमें बताएं, उसे दूर करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय समाचार हम तो प्रसारित करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कई कार्यक्रम है जो इतिहास के पन्नों से लेकर उसे एपिसोड के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं। आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है माझागढ़ बाजार से निखिल पटेल जी का। रेडियो रिमझिम टीम को नमस्कार, मैं आपका कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस से जुड़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सप्ताह में दो दिन गाना फरमाइश करने का मौका दिया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय पटेल जी, आपके पूरे बाजार वासियों को, ग्रामवासियों को, माझागढ़ के निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको पता ही है कि रेडियो रिमझिम का ऑनलाइन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक हम प्रसारित करते हैं। इसके अलावा रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, अपने जिला के अलावा दूर दराज के जनपदों से, जिलों से, राज्यों से लोग जुड़ते हैं। उनका मानना है कि रेडियो रिमझिम हम सबका है और यह बात सही भी है। वर्षा का पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा किसी चौहद्दी में नहीं रहते हैं, किसी बॉर्डर में नहीं रहते हैं। उसी तरह आवाज जो है किसी बॉर्डर में नहीं रहता है। हमारे पास जहां से भी आदेश आता है उसका अनुपालन करते हैं। हमारा एक ही मूल मंत्र है कि आवाज के माध्यम से अपने श्रोताओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए, देश के प्रति उनका समर्पण हो, उनके जीवन में उत्साह हो, वह जीवन में बेहतर करे। जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम अपने आप में मजबूत है। चाहे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, यदि कोई लेह और लद्दाख में बर्फों के अंदर या बर्फ में सड़क बना रहा है, वह भी एक वीर क्रांति है। चाहे कोई गांव में रहकर खेती कर रहा है, वह भी एक जरूरी कार्य कर रहा है। समाज में हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए कि जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो समाज के हर वर्ग का सहयोग लेना पड़ता है। सभी के सहयोग के साथ ही यह शुभ कार्य समर्पित होता है। उसी तरह हमारा देश है। हमारे देश में चाहे मेघालय के लोग हों या नागालैंड के, केरल के हों या कर्नाटक के, सब लोग अपने हैं और सबको साथ लेकर ही चलना राष्ट्र प्रेम है। देश से बड़ा चीज इस जीवन में कुछ नहीं होता है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जहाँ का हवा पानी भोजन ग्रहण किया है, उसके प्रति हमें सदैव समर्पित रहना है, यह मेरा मानना है। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं। रेडियो रिमझिम सामाजिक सद्भावना, राष्ट्र प्रेम बनाए रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और उसमें हमारे श्रोताओं का सकारात्मक सहयोग मिलता है। मेरा मानना है कि यदि कोई ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें सप्ताह में एक दिन एक व्यक्ति जुड़ता है, फिर दूसरे को मौका मिलता है। जुड़ने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ बोलने का, कुछ सीखने का, अपने मन पसंद गीत सुनने का अवसर मिलता है। पिछले सप्ताह मैंने इसके संबंध में बताया था, फिर उसका दोहरा रहा हूँ कि एक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन जुड़ना है। यदि इसका समय बढ़ेगा तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है श्री कृष्णा गुप्ता जी का लछवार से। सर नमस्कार, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संदेश दे रहा हूँ। हेलो क्विज कंटेस्ट में नए और अच्छे प्रश्न पूछे जाए। मैं एक बार जीत चुका हूँ, पुरस्कार कब मिलेगा? मेरा सुझाव है कि हेलो क्यूज कंटेस्ट सप्ताह में दो बार रिकॉर्ड किया जाए और एक बार प्रसारण किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपके माता पिता को, लछवार ग्राम निवासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप ही के पत्र के माध्यम से बताते चले कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का रिकॉर्डिंग प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक होता है, अर्थात 1:30 तक। और उसमें बहुत सारे प्रश्न वर्ग के अनुसार, उम्र के अनुसार हमारे आरजे द्वारा पूछा जाता है। उसमें जो बच्चे विनर बनते हैं, विजेता बनते हैं, उनको प्रति वर्ष 5 जनवरी को एक छोटा सा समारोह करके पुरस्कृत किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि समाज में जो अगुवान है, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे हम आमंत्रित करें और उनके हाथों से HQC जीतने वाले बच्चों को या व्यक्ति को पुरस्कृत करें। यह सिलसिला रेडियो रिमझिम के स्थापना काल से चल रहा है और आगे भी चलेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और आपने दूसरी बात रखा कि सप्ताह में दो दिन रिकॉर्डिंग किया जाए, तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन डेढ़ घंटा यानी 90 मिनट तक रिकॉर्डिंग चलता है और उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। आज भी रिकॉर्डिंग हुआ है, हमको लगा कि बहुत सारे लोग भाग लिए हैं। और आरजे जो है भारती, इसका रिकॉर्डिंग आजकल कर रही है, तो आप उसी में भाग लीजिए और फिर विनर बनिए, फिर विजेता बनिए। रेडियो रिमझिम द्वारा आपको जरूर 5 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। विलंब हो सकता है, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखें। रेडियो रिमझिम परिवार उतना ही कहता है जितना कर सकता है, तो हम पर भरोसा रखें। यदि आप विजेता बने हैं तो आपको जरूर सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है गोपालगंज चंद्र गोखुला रोड से नीरज तिवारी जी का। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को नमस्कार है। आपके यहाँ से जो विज्ञापन चलता है, मेरा आग्रह है कि उन दुकानदारों और डॉक्टर को बताया जाए कि जो रेडियो रिमझिम सुनकर आए उन्हें विशेष छूट दे। गीत संगीत का कार्यक्रम दूसरों से बेहतर है। मेरा एक सुझाव है कि इंटरव्यू का प्रसारण हुए कई महीने हो गए, उसका भी प्रसारण किया जाए, काफी अच्छा लगेगा। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में आप निवास करते हैं और रेडियो को लगातार सुनते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके माध्यम से जो नए श्रोता हैं उन्हें बताते चलें कि गूगल के प्ले स्टोर में रेडियो रिमझिम का ऐप है, आप डाउनलोड करके अपने सुविधा के अनुसार इसे सुन सकते हैं। रेडियो रिमझिम आज के दौर में चार तरह से अपनी आवाज को प्रसारित कर रहा है। पहला, रेडियो पर आप सुन सकते हैं। दूसरा, ऐप के माध्यम सुन सकते हैं। तीसरा, इंटरनेट से सुन सकते हैं। और चौथा, अपने वाहन पर जहां तक जाएं वहां तक सुन सकते हैं। कभी कभी लगता है कि मोहम्मदपुर पहुंच गए या अमलोरी सरसर पहुंच गए, आवाज जो है कटने लगा, तो ऐप से अपने साउंड को जोड़ लीजिए और जहां तक जाइएगा हमारी आवाज स्पष्ट और साफ सुनाई देगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल बड़ा वाला मोबाइल हर हाथ में पहुंच चुका है, उस पर भी हम लोग अपनी आवाज को छोड़ते हैं। उसके ऐप से या सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे गतिविधियों को आप जान सकते हैं। आपके माध्यम से हम बताते चले कि रेडियो रिमझिम जहां है बंजारी मोड़ गोपालगंज, वहां से 15 किलोमीटर के अंदर हमारे वॉलेंटियर, हमारे स्वयंसेवक गांव-गांव में घूमते हैं, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, तस्वीर लेते हैं। वह चाहे सरकारी विद्यालय हो, गैर सरकारी विद्यालय हो, जीविका बहने हो, उनका समूह हो, सबके पास पहुंचना, बातें करना, जानकारी देना और तस्वीर लेना प्रतिदिन का काम रेडियो रिमझिम का है। और उसमें आप लोगों का सकारात्मक सहयोग हमारे टीम को मिलता है। जो तस्वीर हम लोग लेते हैं उसे सीधे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग भेज देते हैं कि आज जो है फलाना गांव में गए थे, वहां लोगों से बातचीत किए, और उसका प्रूफ सबूत के तौर पर वह तस्वीर भेजते हैं। यदि रेडियो रिमझिम की टीम जाती है तो मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप लोग जरूर सहयोग करें, ताकि हमें लगे कि केवल स्टूडियो में बैठकर हम बोलते नहीं हैं, क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं। अपने आयु वर्ग को देखते हुए समय समय पर हम भी क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, जो रेडियो रिमझिम के सहयोगी हैं, जो रेडियो रिमझिम के वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, वह प्रतिदिन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जरूर जाते हैं और वह अपने साथ विजिटिंग कार्ड भी रखते हैं, जिस नंबर पर आप कभी भी बात कर सकते हैं। वैसे जो लोग आपका संदेश मिला कार्यक्रम सुन रहे हैं, यदि उनके मन में भी लगता है कि हमें भी अपनी बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाना चाहिए, तो उसके कई माध्यम हैं। पहला व्हाट्सएप के नंबर पर आप लिखकर भेज सकते हैं, दूसरा ईमेल कर सकते हैं radiorimjhim@gmail.com पर, और तीसरा अपने फोन पर आप सीधे हमारे यहाँ संदेश को लिखवा सकते हैं। वैसे हम यह नंबर बताते हैं, आप लोग जरूर इसे सुरक्षित कर लीजिएगा। पहला नंबर है 9523874088। एक बार पुनः बोल रहे हैं, 9523874088। यह नंबर जो है रेडियो रिमझिम के कार्यालय का है। एक और नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9852788291। या सीधी भाषा में कहें 9857788291। इस नंबर पर भी आप अपने बातों को रख सकते हैं। रेडियो रिमझिम सबका स्वागत करता है, सबका खैर मकदम करता है, लेकिन कभी भी कोई संदेश भेजना हो तो इसके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आदरणीय तिवारी जी, आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम अच्छा लगता है, यह जानकर हमें भी अच्छा लगा कि लगातार परिश्रम और अपने अनुभव को मिश्रित करके हम कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। यह बात नहीं है कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं या ज्ञानी हैं या दार्शनिक है, कुछ नहीं है। आप लोगों से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो आपके सहयोग से, सार्थकता से बेहतर करने का प्रयास करता है। पूरे कार्यक्रम में यदि हिंदी शब्दकोश के आधार पर देखेंगे तो मेरी भी सैकड़ों गलतियां निकलेगी, हमें महसूस होता है, लेकिन हिंदी बोलते समय, धारा प्रवाह बोलते समय यह चूक हो जाती है। ऐसे हमारे कई मित्र हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं कि और बेहतर और शुद्धिकरण के साथ बोलना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जो आदत लग जाता है वह जल्दी छूटता नहीं है। तो आपने जो सुझाव दिया है कि इंटरव्यू लिया जाए और प्रसारित किया जाए, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सुझाव को हम स्वीकार करें और आने वाले समय में वीडियो और ऑडियो चिकित्सक का, व्यवसायी का और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका हम रेडियो रिमझिम के माध्यम से प्रसारित करें। तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। लंबी बातचीत हुई, कई तरह का मसला हल हुआ और एक बार पुनः जो सर्वे टीम द्वारा विभिन्न गांवों में गई है, कुछ तस्वीर हमारे हाथ में लगा है, उन लोगों को एक बार पुनः हम प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने रेडियो रिमझिम टीम के साथ, सर्वेकर्ता के साथ बड़ा ही सकारात्मक सहयोग दिया है। आने वाले समय में मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, आपका सुझाव लूंगा और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अब इसी के साथ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज।
8: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
10: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
9: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी,
10: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
9: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
11: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
12: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
10: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
12: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
12: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
9: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विल्स स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
14: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
15: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होर्मोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपद, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01123314-01123717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकसत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
9: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
10: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
9: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
10: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
9: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
10: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-023-35-8-76 या 95-999-27-982।
11: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
11: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
11: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में। श्री

0: जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99349-51-51 पे।
5: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
6: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
5: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
6: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
6: ऑनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AM पर।

0: का समाधान करने में सक्षम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित 1,60,000 से अधिक परिवारों के बैंक खाते में सहायता राशि का अंतरण करेंगे। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और भत्तों के सत्यापन के बाद ही जारी होगा अगले महीने का वेतन। और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नया और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में आज अवसरों की कोई कमी नहीं है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता राशि का वितरण करेंगे। पटना में आयोजित कार्यक्रम में अनुदान राशि वितरण के द्वितीय चरण के तहत 1,60,201 परिवारों के बैंक खाते में 112 करोड़ 14 लाख की राशि अंतरित की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 7,000 की राशि दी जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच पुनर्विकास योजना के अंतर्गत अस्पताल भवन के टावर 3 का भी उद्घाटन करेंगे। नए भवन में मरीजों के पंजीकरण के लिए अतिरिक्त खिड़की और पेडियाट्रिक विभाग में कई बेड की सुविधा दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसका किसी सरकार या दल से कोई विशेष संबंध नहीं है। श्री पासवान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हर शंका का जवाब सड़क पर नहीं मिल सकता है।
2: चुनाव आयोग ने बिंदुवार तरीके से हर एक शंकाओं का जवाब देने का काम किया। उसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई शंका है, कांग्रेस अभी भी प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कीजिए प्रदर्शन, पर अगर आपको सही में अपने सवालों का जवाब चाहिए तो सड़क पे नहीं मिलेगा। वो जिस तरीके से मां महिम से समय लेके प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने, वैसे ही चुनाव आयोग से आप समय लीजिए।
0: वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि लोगों के लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के अधिकार को भी छीना जा रहा है। शिक्षा विभाग अगले महीने के वेतन भुगतान से पहले शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और भत्तों की जांच करेगा। वित्त विभाग ने सभी कर्मियों के वेतन और भत्तों से जुड़े आंकड़ों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ों की जांच में कई विसंगतियां पाई गई हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि सत्यापन के बाद ही अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा। गया जी स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत

0: दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान करेंगे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को चांसलर गोल्ड मेडल, स्कूल गोल्ड मेडल और डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 27 अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार कई अधिकारियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना के अनुसार संजय कुमार झा को विशेष शाखा से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। अजय कुमार सिंह को विशेष शाखा से विशेष कार्यबल पटना भेजा गया है। साइबर अपराध से जुड़ी इकाइयों में भी अधिकारियों का तबादला किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 16 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रों और भजनों से गुंजायमान है। समाजवादी चिंतक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के कंकड़बाग में आयोजित राजकीय समारोह में लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के खटौरी गांव में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नवरात्र के प्रथम दिन कलश यात्रा के दौरान ये सभी जल भरने के लिए दून नहर जा रहे थे। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहचा पाटम में छापेमारी कर पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और एक देसी मास्केट बरामद किया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में एक व्यक्ति की हत्या से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शहर के एकता चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क जाम के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा। अब खबरें खेल जगत से। राजगीर में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन उत्तर प्रदेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए हैं। रिंकू सिंह 109 रन बनाकर नाबाद हैं। बिहार की ओर से सूरज शर्मा ने 2 विकेट लिए। आज मैच का दूसरा दिन है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में पटना के देवांश केसरी ने 2 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते हैं। देवांश ने क्लासिकल टीम रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता, वहीं विरच टीम रैंकिंग में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बेंगलुरु में खेली गई एशियन मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण 1 रजत समेत 10 पदक जीते हैं। बक्सर के बिजेंद्र राय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज से 14 अक्टूबर तक अररिया में राज्य स्तरीय विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से
1: लिखा, नागरिकों का प्रदर्शन का अधिकार पुलिस एक्ट के दायरे से बाहर नहीं। दैनिक भास्कर ने पटना मेट्रो से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, 2028 तक पूरे पटना में दौड़ने लगेगी मेट्रो। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, एनटीए सुधार समिति ने परीक्षा में देरी से आने पर भी केंद्र में प्रवेश का दिया सुझाव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित 1,60,000 से अधिक परिवारों के बैंक खाते में सहायता राशि का अंतरण करेंगे। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और भत्तों के सत्यापन के बाद ही जारी होगा अगले महीने का वेतन। और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।

0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
4: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर करते।
5: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: आप कौन कौन मैम बोल रही हैं आप?
2: मैं भारती।
1: अच्छा जी, भारती भारती, अभी तो उनका नंबर था, आज भारती जी का नंबर लगा है।
2: जी
1: क्यों इतना लेट से? क्या घर चली गई थी क्या?
2: नहीं तो
1: वो दिन दो तीन प्रोग्राम वो दे चुके हैं। वो क्या नाम है उनका?
2: मनोरमा जी।
1: मनोरमा जी, तो फिर आप जो है इतने दिनों से कहाँ?
2: हम
1: तो समझे यहीं पे है, लेकिन इस प्रोग्राम में आप नहीं जुड़ती है ना? और पहले जैसा भारतीय जी नहीं है, बदल गई है?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बदले नहीं है। जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना कर लेता है।
1: कर लेता है। पहले आवाज भी बहुत आपका सोलो था, पहले बहुत कुछ था। अब तो मैं अपना प्रोग्राम में आप गाना भी गाती है, औरतें जो है बड़ी तारीफ कर रही हैं कि मैडम जी आप गुनगुनाती हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। आप पूछती हैं कि आप गाती हैं कि नहीं, हाथ नहीं और शर्म से झुक जाते हैं लोग। तो एक सुना था कि वो कह रहे हैं कि आप गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा हम गुनगुना लेते हैं कभी। ऐसा सुनने में हमको मजा लगा आपका प्रोग्राम का, तो सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप गुनगुनाते रहिए अपने प्रोग्राम में भारती जी।
2: बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ।
1: तो भारती जी आज कौन सा गाना सुनवाइए?
2: बता दीजिए,
1: आपने बता दीजिए, कोई गाने का बोला भी बता दीजिए कि मैं ये गाना आपको सुनवा रहा हूँ। बोलिए, हमारे लायक मतलब हमारा उम्र जो है तो ज्यादा है ना, 50+ है मेरा, तो अब उसके हिसाब से बोलिए कौन गाना सुनवा रहे हैं। आप बड़ी गुनगुनाते हैं, इसके लिए हमको पूछना पड़ा, कहना पड़ा। बोलिए, आज आपको घेर डाले हैं गाने के पीछे। अच्छा, कोई गाना है धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, ऐसा कोई गाना है?
2: है,
1: एक महावीर जी है हमारे कपूरपुरा बाजार पे, वो कहते हैं कि ये गाना का रिक्वेस्ट किए ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। थोड़ा वो तो माइंड शॉर्ट आदमी है वो, और बराबर कहता है वो हमसे ये गाना सुनवाइए ना। बराबर रेडियो जो है कान पे लगा कर रखता है, दुकानदारी करता है और पूरे दिन रेडियो बजता है उसका।
2: जुर्माना
1: जो भी हो, ये गाना जो है ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, ये गाना सुनवा दीजिए। मोहबी जी खुश हो जाएंगे गाना सुन के, कहेंगे वाह वाह मेरा गाना बजा।
2: बिल्कुल,
1: हाँ तो वही गाना तो बजा दीजिए मैडम।
2: गाना उन्हीं को डेडिकेट करेगा।
1: बस बस आपको अभी तो हम महावीर जी को डेलीकेट करेंगे और कहेंगे का हो महावीर जी, कैसा लगा गाना, हमरा को बताइए दुकान पर आए तो। हाँ तो वही गाना सुनवा दीजिए।
2: ओके
1: ठीक है, ओके तो रख रहे हैं।
2: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या खरीद रहा?
1: ठीक बा, आपन बताएं।
2: बढ़िया बा, क्या होता?
1: बस रोवा सबसे बात होता।
2: और सब बताओ मैडम।
1: और सब पे ठीक बा, तब क्या होता अभी?
2: जुम्मा हो, थोड़ा सर सफाई होता।
1: चलिए, हाँ हाँ चलिए, बढ़िया बा। तब कौन सा गाना सुनेंगे बा?
2: गाना नहीं है, गाना रब ना करे ये जिंदगी, रब ना करे ये जिंदगी, जिंदगी किसी को दगा दे, वही गाना चलेगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
2: उससे पहले आपको सुनने वाले सभी लिसनर को
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: लाडली बोल रही हूँ नवादा से।
1: जी आप, मुझे तो मालूम। चलिए फिर, बढ़िया है।
2: तो चल रहा है अच्छा से।
1: हाँ।

0: चलिए ठीक है। आप मेरा अपना नाम बता दीजिए थोड़ा।
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा, भारती भी आई है क्या? है
1: हाँ।
0: नहीं आई?
1: नहीं वो भी है।
0: चलिए ठीक है।
1: ओके गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं।
0: थैंक यू,
1: डिपेंड हो रहा था।
0: थैंक यू। सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrwar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
14: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
14: नमस्ते मैम।
11: जी नमस्ते,
14: कैसे हैं मैम?
11: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
14: हम भी ठीक है
11: जी। नाम बता दीजिएगा अपना।
14: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
11: जी जी, तो क्या हो रहा है अभी?
14: अभी तो कॉल लगा रही थी।
11: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: तू बसी हो कर अंदर में, हम ढूंढते रह गए मंदिर में।
11: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
14: जी मैम, आपको और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरा छोटा भाई है उनको भी।
11: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
14: जी मैम,
11: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
1: में।
0: जी, क्या हाल चल रहा है?
1: बिल्कुल ठीक हुआ, कैसा बानी?
0: हम तो ठीक बानी
1: जी।
0: क्या होता है
1: अभी? तो क्लास में थोड़ा सा टाइम निकाल के रोवा से बात कर रहा था।
0: काफी अच्छा, भोजपुरी बोल लेता नहीं रोवा?
1: कोशिश कर रहा हूँ की भोजपुरी बोली।
0: ऐसे ही कोशिश करते रहे, हम बिल्कुल अच्छा से बोले। अभी तक काफी अच्छा बोला था।
1: जी, हम सोचने की आज के लास्ट टाइम हो गए, 12:31 हो गए, अब हमारा फोन नहीं लगा, तो लाइन में हम रही तो आप रिसीव कर लेंगे।
0: जी जी,
1: आज मैं पुराना माई फिल्म में गाना सुरेश वाटर के वाजी।
0: गाने के बोल बता दी।
1: गाना के बोल है चलल जाला भाजी, इस तरह के बोल है चलल जाला हो भाजी हमारा गाड़ी, इस तरह के कुछ बोल है। गाना बहुत अच्छा बात, सुरेश वाटर और कौन एगो लेडी सिंगर है, नाम याद नहीं थे।
0: चले कोनो बात ना, हम देख के बजा दो।
1: जी जी जी,
0: और गाना केहू के सुनाहू के बाद?
1: जी जी, रोवा के सुनाई, हम सुनी और जितने भी रेडियो रंजन के लिसनर है
0: जी जी। और गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
1: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM पर।
8: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
9: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
8: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
9: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello. Hello, hello, hello, hello, hello.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhvar aur shukrvar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: जी नमस्ते, प्रणाम, आजादी राधे।
14: नमस्ते, प्रणाम, आजादी राधे।
15: अस्ते अस्ते काहे बोलत नहीं,
14: का हो गेल बा आज रउआ
15: और घर फंस गई बा
14: कहे की का हो गई, कहे से बोला था नहीं,
15: पहचान कहीं नहीं आई।
14: अगला दिन से कोयला बनी हुई सब फंसा था का,
15: और क्या बोले ला बीएफी कल भूख रही ना, तो फल फलहारी ज्यादा खा ले बनी वही क्या सारा। और बताई नाश्ता हो गई बा?
14: नाश्ता तो हो गई।
15: और सुनी ना, आज की रिकॉर्डिंग जितना चलल बाबा मेरा खाली रौरे फरमाइश वाला रवा पसंद की, एक दो गाना अपने पसंद से लोग सुन ले रही है।
14: कहते हैं कि रवा बहुत दिनों से बचा था नहीं, रवा अपना पसंद से बजाई बजाई।
15: और वही में तो कसर हम पूरा कर ले रही, और गाना बहुत अच्छा सेलेक्ट कर ले रही और बहुत अच्छा लग रही जी,
14: एकदम बिल्कुल रवा पे सूट करे वाला गाना करके डाल ले रहा हूँ।
15: हमके पाता रहे होगा ना के एक लाइन हम समझ चुका रहा है सर के बारे में अगर हम बोलबो करें तब पूरा दिल से बोले मैं शिकायत सोता और खास करके वहां के जनता नहीं जब वो संडे के दिन आवे नहीं तो इतना धाकड़ भोजपुरी बोले नहीं कोनो कोनो शब्द में बहुत काफी अच्छा लगेगा। और हाल में ये संडे के दिन एगो बात बोलत रहे कहत रहे जे ये को चाना अकेले भाड़ ना फोरी
14: जी जी तो बात है
15: सुन के काफी अच्छा लगे तो आज एगो छठ के सॉन्ग सुना दी।
14: बिल्कुल बता दी कौन सा
15: जोड़े जोड़े फालवा पवन सिंह जी की आवाज में।
14: अच्छा अच्छा
15: और पूरा छठ के माहौल और नवरात्रि के माहौल ये सब हमने के मुंह पर आ रहा बा। और बताई नवरात्रि रवलों के गाँव में कहिया चढ़ाता
14: संडे कहीं ना चढ़ाता।
15: हाँ संडे की चढ़ता और दी ये गाना सब लोग के सबारे रही रानी की तरफ से का
14: बिल्कुल और... रेडियो टीम से मैं कॉल करनी है खाती बहुत बहुत धन्यवाद
15: बाय
14: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो और 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ, हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज से बात कर रहे हैं।
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी, हम लोग का भी ठीक है।
0: चलिए मैम, ठीक रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैडम गाना सुनना चाहते है बंधन फिल्म का, जो हिंदी गाना है बंधन फिल्म।
1: हाँ,
0: सूरज कभी गगन से चंदा कभी सूरज किरण से।
1: जी जी है।
0: हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम, सुनवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको और रेडियो जितना हमारे परिवार है उन लोगों को।
1: जी।
0: और हमारे दोस्त लोग है सुफी आलम और मिराज आलम, यूसुफ अली, जितेश शर्मा, गोविंदा शर्मा, मोहम्मद रूफ, बस इन लोग को सुनवाना चाहते हैं।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: प्रसाद क्लिनिक,
16: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
15: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
16: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
7: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
19: नमस्ते दीदी
18: जी। नमस्ते,
19: विकास कुमार हिंटापुर।
18: जी जी, कैसे हैं आप?
19: बढ़िया बानी, आप कैसन बानी मैडम?
18: हम तो ठीक बानी।
19: अच्छा, सब नाश्ता वास्ता हो गई बेटे?
18: हाँ, नाश्ता हो गई बा।
19: अच्छा, सब और सब बताई, मौसम मौसम कैसन हटे गोपालगंज में?
18: अभी तो गोपालगंज के मौसम बढ़िया बना था वे।
19: अच्छा, संडे के दिन तो नवरात्र चढ़ जाये नो माता जी के? माता जी आ जाए धरती पर।
18: बिल्कुल आए
19: परकट से निकल करके।
18: तब और सब
19: तब रोरा पूजा वूजा करी ले ना नवरात्र में? भूखी ले?
18: पूजा करे नहीं, भूखे नहीं, बस दू अभी भूखे नहीं, पूरा ना भूखे देला लो की जाऊं के बाहूं हुआ तब परेशान हो जाए।
19: अच्छा, दुए को भूखी ले? अच्छा, ना वही में ड्यूटी नु करे बनु, सही बात बटे। और काम धाम नहीं था तो मैडम वही करिए बैठल बा, मशीन वशीन बंद बटे तो।
18: अच्छा, छुट्टी बा का?
19: ना छुट्टी ना, कंपनी में हम भी बैठल बटे एकदम।
18: चलिए बढ़िया बाबा, आराम करे के मिलत आवे और क्या चाहे।
19: काम धाम रहेला तब न थोड़ा मन उन लागत रहेला ना।
18: अच्छा, कबो कबो आरामो करे के चाहिए, ज्यादा काम ना करे के चाहिए।
19: भाई दो चार दिन से खाली आ करके बस बैठना ही जाई जाता है कंपनी में।
18: कौन बात है,
19: 8 घंटा
18: हाजिरी
19: बोना था 8 घंटा के। सब और सब बताई, घर में सब सब कोई सही है ना?
18: घर में सब क्यों ठीक बा?
19: मेहनत करके बहुत लगावा जला ना फोन, रोरल से बात करे।
18: जी जी, केहू केहू कहे नहीं लो की हम इतना बार लगे नहीं है, सुन के बुझाला की कितना मेहनत करे के पड़ता।
19: नहीं हम ही कबो कबो लगा दिले मैडम, रोरा से क्या बताई, 40-50 साल लगाई ले तब ये खाली लगेला।
18: अच्छा,
19: क्या मैंने 49 बेर लगाए तो 50वा हाली में लागी रहा फोन। अब बुझ जाए की कितना देर वेट करे के पड़ेला।
18: तो बता दी कौन सा आज गाना सुने?
19: आज पवन सिंह के भक्ति गाना सुने।
18: गाना के बोल बता दी।
19: निमिया के छाव में 9 दिन रहलू माई संग हमारे गाँव में, यही वाली मैडम।
18: जी जी, और गाना क्यों के सुनेबो करे?
19: सबसे पहले आपके सुनवाई आप लोग के। जितना रेडियो रेडियो सुने वाला हूँ सबके।
18: जी, गाना तो बहुत अच्छा हुआ, सुने तो सबके सुनी, अच्छा गाना बा।
19: दिल छू दे वाला गाना बा एकदम। दसवीं के दिन ना बाजेला ना मैडम, लेकिन शुरुआतों में बाजेला।
18: कोनो बात ना, पहले बुलावल तो जाओ माता जी के, ओकरा बाद
19: जरूरी बटे।
18: चलिए ठीक बा, तब और गाना प्ले करता नी।
19: अच्छा,
18: सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
19: ठीक है, नमस्ते दीदी।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार, हम मधु सौरिया से बोल रहे हैं, राजू माँ।
0: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है।
0: तो क्या कर रहे हैं अभी?
1: अभी क्या कर रहे हैं, बाजार में कहाँ काम चल रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं?
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है,
0: बता दीजिए। गाने की बोल बता दीजिए।
1: गाना है कि साइकिल में साइकिल लड़ाई बबलिया है।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: हेलो,
11: अस्सलाम वालेकुम मैम।
10: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 FM में।
11: कैसी हैं?
10: जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: नाखून हो गया?
10: जी मेरा तो हो गया है।
11: गाना सुना दीजिए।
10: बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए पहले अपना।
11: अतुल सी पठान पट्टी से।
10: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: हिंदी गाना नहीं है, इश्क दीवानी। वही हिंदी गाना बता दीजिएगा, इश्क दीवानी लड़ गई वही।
10: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
11: जिया का, जिया को, साइन अपी को, आलिया को, सलमान को, रोशनी को और सबको, रेशमा जी को।
10: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 91.4 FM में।
0: सलाम तुम्हें।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे इसमें बोलते हैं पठानपति पे।
1: जी जी, कैसे बानी रहुआ?
0: ठीक बानी हम अपन बताई।
1: हम लोग ठीक बानी सर।
0: ठीक बानी रहुआ हम नरमा में।
1: हम की ठीक बानी।
0: नाश्ता पानी सब हो गया?
1: हाँ,
0: तो ठीक रहा था ना?
1: बिल्कुल एकदम ठीक रहा था।
0: काय मेहराइल बोलता नहीं तुम्हें? दिक्कत होगा जी?
1: ना जी, कबो कबो बोलत बोलत ना बोले के मन करेला।
0: तो पानी लेके आई?
1: पानी रख ले पानी सन।
0: रख ले पानी पीनी है ना? पानी होनी
1: पीए पानी सन। पानी ना रहो तो कैसे रहो?
0: ठीक है कहा था नहीं। अरे घर पर में सबको ठीक बा?
1: हाँ सबको ठीक है।
0: बाय घर गाना गाओ तो नहीं आए? बेईमानी करता नहीं?
1: बेईमानी नहीं की करत तो एक दिन तो जेबे कभी मन पहले रहुए तब वो भोजपुरिया एक्सप्रेस में।
0: भोजपुरी गाना था। रितेश पांडे गाना था ना?
1: हाँ लिया वो खबर
0: तो भवानी को गाकर सुनाई?
1: बिल्कुल सुना रही।
0: सुना रही जब चालू हो जाए तो सुने नहीं तो पहले ही बता देना की बजा दू गाना। और सब बताई?
1: और सब तो ठीक बावे। तब खाना पीना हो गई बा?
0: खाना नाश्ता हो गया, खाना हो गया, दोनों हो गया।
1: हाँ टाइम भी तो होता है एकदम लेट हो गई।
0: खाना बना दे ले बानी जन नहीं? नाश्ता पंदा सुन रही भाई।
1: तो बताई कौन सा आज गाना सुने?
0: गाना सुने के बाद हिंदी गाना सुने के बाद
1: बता दी।
0: हम अपनी मोहब्बत की इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। सुनाऊरा बानी मुनारमा में बानी रानी बाड़ी करिश्मा बाड़ी उनका भाई बड़न निसार बड़न और जितना लोग सुना था सब फिर सुनी रेशमा की तरफ से गाना।
1: बिल्कुल गाना प्ले कर जानी
0: जी। ठीक बा
1: सुनाते हैं रेडियो रमजी 90.4।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
4: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
3: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया।

0: सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528074088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो मैम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM। वालेकुम अस्सलाम।
3: ठीक है
2: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
3: मैं ठीक है।
2: आपका नाम बता दीजिएगा।
3: रोशनी।
2: रोशनी,
3: हाँ।
2: कहाँ से?
3: परिधान पट्टी से।
2: अच्छा जी,
3: और सब बताइए।
2: जी और सब ठीक है।
3: आस्था हो गया?
2: जी बिल्कुल हो गया है। मेरा आपका हो गया?
3: हाँ मेरा हो गया।
2: तो कौन सा गाना सुनना है? हेलो,
3: तुमको मंगा दीजिएगा।
2: जी
3: हाँ,
2: गाना बता दीजिए मुझे।
3: कोई भी बता दीजिएगा, भोजपुरी गाना।
2: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
3: पहले सुनाएंगे आपको, और मेरे अम्मी को, और रानी चाची को, और जिया को, और तारा को, और साहिन को, और रेशमो जी को।
2: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जय भवानी, मैं बद्रीनारायण मुनि बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कहाँ से हैं आप?
1: भनही से।
0: अच्छा जी,
1: तो आप सुनाइए, हाल चाल क्या है?
0: मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं।
0: जी ठीक,
1: गाना
0: भी चाहिए?
1: अब हमको तो गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बताइए।
1: घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला।
0: जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: आपको, पूरा रिमझिम परिवार को, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सबको सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: हेलो, हाँ
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है जी। जय भवानी।
0: जय भवानी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जय जी।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70705763100 या 70705742100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: ये नसीब इम्तिहान देती है मेरी, तेरी दर्द तड़प देती है मुझे, फिर से तू कभी तुम्हें दूर नहीं किया, क्यों बेवफाई का इल्जाम देती है मुझे। नमस्कार।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैं कमरान नसीब फकरी सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से रहती है।
11: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
2: जी बढ़िया हूँ, और सब बढ़िया घर में, और परिवार सब बढ़िया।
11: जी सब बढ़िया।
2: मौसम कैसे रहा है गोपालगंज
11: का? मौसम तो गोपालगंज का बढ़िया बन रहा है।
2: तो धूप हो रहा है, गर्मी है अभी मैंने।
11: धूप तो हो रहा है पर उतना नहीं, कभी धूप कभी छांव।
2: नहीं तो हो रहा है, अच्छा धूप गर्मी है दिल्ली में गर्मी है, तो मुझे जो ठंडा नवंबर में चालू हुई ना आपको लगता है।
11: जी अब हल्का हल्का तो ठंडा लग ही रहा है सुबह में और रात में।
2: हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। आप रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, बैंक का दिया था, तो आपको बताऊंगा कैसा आया रिजल्ट।
11: कब तक आने वाला है?
2: 26 तक आ जाएगा रिजल्ट, आता है हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरी।
11: भरोसा रखिए।
2: और बाकी सब?
11: जी जी बाकी सब ठीक है,
2: और बढ़िया चलना चाहिए और क्या। तो हमको आज गाना सुना दीजिए।
11: बिल्कुल बता दीजिए।
2: फिल्म का नाम है याद नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला फिल्म छलिया 1960 आई थी।
11: ओके, और गाने की तो
2: ये गाना है दम दम दीदा दीदा मौसम दीदा दीदा फिर मैं तो गिरा हाय अल्लाह, ये वाला सॉन्ग है मुकेश
11: वाणी।
2: तो ये आपको सुना दीजिएगा और फिर आपसे मंडे को मुलाकात हो।
11: जी जी, और गाने की
2: तो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हा। देखिए तो मैं भूल ही रहा था। सबसे पहले आपका बात दमदम सिद्दीकी रानी हरकुआ सदीना सब्बा सिद्दीकी हेना हजरा निशा सुकुनवा रोशनी कुमारी दिलीप राम मुकेश बरजू भास्कर जिजेंदर उमर शंकर समीर आलम गुलाम हुसैन और अपने लोग सुन रहे हैं तो सुनाना चाहता हूँ आपका ये अहमद अली मरिया परवी। तो सबको सुना दीजिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके नमस्कार।
11: जी नमस्कार, रेडियो रंजन में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
0: गाना सुनना है?
1: बिल्कुल, नाम बता दीजिए।
0: नाम
1: जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: साहिबा खातून कैथोले से बोल रही हूँ।
1: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो मैलों से प्यारी है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी आपको और रेडियो रमजान सुनने भी सही श्रोता को।
1: जी जी, तो आप ठीक है?
0: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
1: जी जी, हम भी ठीक है,
0: खाना खा लेंगे।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 FM।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
7: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, बहुत स्वागत है आपका। 91.4 FM.
14: जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: क्या हो रहा है अभी?
15: काम हो रहा है।
14: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
15: अरिजीत सिंह का कलंक।
14: कौन सा?
15: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
14: हाँ हाँ।
15: कलंक जाके बताऊँ क्या?
14: बिल्कुल बता दीजिए।
15: लेकिन आवाज उससे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
14: इतनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है,
15: उसे दो लाइन जाके बता रही
14: हूँ। बिल्कुल।

0: जी, काफी ज्यादा खूबसूरत गा रही हैं और बोल रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है।
1: नहीं
0: नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो तो अभी अब अपने काम में लगी हुई हूँ। और गाना किसी को सुनवाएंगी भी? जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते बालवीर सुंदरपुर।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: बहुत ही गाना अच्छे सारे की आवाज सुना दिया है, थावे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थावे वाला कोई भी खेसारी की आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशीष अद्वित
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, नू ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जोकर।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
4: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
4: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
4: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
2: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
2: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो दोस्तों, आप सभी को दशहरे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी आप सभी को। और इसी के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी। तो चलिए बिना देरी के गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर जुड़ रहे हैं। और गाने की बोल है मस्ती मस्ती।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक का एक खूबसूरत सा गीत मस्ती मस्ती और मूवी है चलो इश्क लड़ाएं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जय माता दी का हलवा। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको भी मेरी तरफ से जय माता दी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जय माता दी दशहरे के शुभ अवसर पर खुशियों की हो बरसात, माता रानी रखे सबके सिर पर अपना आशीर्वाद, मनोरमा मैम की सुरीली आवाज़ से सजे योर वॉइस योर चॉइस का ये प्यारा समा, दोस्तों की मुस्कान बनी रहे खुशियों के महके हर जहाँ, माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे, दुख दर्द दूर करके जीवन में प्रेम और उजाला कर दे। और लिख रहे हैं जय माता दी शुभ दशहरा और ओम साई टेलर राघव जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल चाल है? और जी मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी गुड आफ्टरनून, मेरी तरफ से सब लोगों को बोल दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि आन बान शान और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना बा और सुपर सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम कैसी हो आप, मैं रंजीत चौधरी दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो द गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से और सुपर सॉन्ग और मैं भी जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा गाना सुन के और मेरी तरफ से सबको नमस्कार और वाह सुपर सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है और जी आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम सरफरोज अली जुड़ गए हैं और मुझे भी गाना सुनना है और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो भारती मैम, हम सफरोज अली गोपालगंज से, हमको गाना सुनना है जानवर मूवी से कसम से कसम से, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, सुनाइए प्लीज। और सुनवाना है सभी रेडियो दोस्त को, आपको, मनोरमा मैम को, रानी जी को। ओके

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-63-96। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, नासिम अंसारी उत्तर प्रदेश से, पडरौना कुशीनगर से जुड़े हैं और लिख रहे हैं मेरी भी फरमाइश पूरा कीजिएगा। और मैम, गाने की फरमाइश पहुंची हुई है तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, मनोरमा जी, नमस्कार। इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और दशहरा का काम चल रहा है और हम लोग का आप लोग का प्रोग्राम सुनते हैं और काम करते रहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी, तो जी बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ काफ़ी सारे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते मैम, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति है, पिपरा सिवान से जुड़ा हूँ और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार कहिएगा। और इसी के साथ यहाँ सरफरोज जी की तरफ से वॉइस मैसेज में फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
7: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम बहुत खुश बानी गाना सुन के, और कैसा गाना लगा बताएं जरूर आपके कैसा लगा।
6: तो जी राउर गाना तो बिल्कुल एकदम मस्त और झकास रहला और काफ़ी बढ़िया लागल है सुन के। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि आरजे भारती भारती जी और रेडियो रिमझिम की पूरी टीम को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं माता रानी की कृपा यूं ही बनी रहे। जय माता दी। और मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, और साबिर अंसारी जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके गाने को प्ले करेंगे। और गाने की बोल है तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, और सोनू निगम का गाना है अलका याग्निक का। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4।

लोग सुन रहे थे साबिर अंसारी जी की तरफ से एक प्यारा सा गाना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू भारती मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि फिरोज शेख भागलपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम भारती जी, हम फरीदा खातून बंगरा से, और हमें भी शो में शामिल कर लीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं कि खास आपके लिए प्यारी सी लाइन, और लिख रही हैं आँखों से गिरा अश्क कोई उठा नहीं सकता, तकदीर में लिखा कोई मिटा नहीं सकता, आप दिल की धड़कन हो हमारी, हमारी धड़कन को हमसे कोई चुरा नहीं सकता। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा गोर छू के भारती जी, हम हूँ आगल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, और हम कुनवा मोड़ घर से जुड़ल बानी, और लिखत अनि अभी हम उत्तम सोनी की दुकान पर आयल बानी नथी आले वे। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और एक ही साथ है यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत अनि ओपनिंग में हंस के हंसे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लिखत अनि कि हम कैसे भुला दी ओके जिकरा के हम कबू आपन जहान मानत रहनी, जेकर एक ठो बोली सुन के चेहरा पर हंसी आ जात रहे, आज उहे बोली सुने खातिर हमार करेजा तड़पता। और लिखत अनि कि हम उसे खाली प्यार ना कहीं ओके अपन आत्मा में बसा ले ले बानी। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ल बानी धनेश जी। और एक के साथ यहाँ अगला हमारे पास गाना के फरमाइश पहुँचल बा

और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे की लिखत आनी कि हमार गाना प्ले कर दी मैडम जी और बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से जुड़ल बानी। तो जी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ के तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बा शिल्पी राज की आवाज़ में और गाना के बोल बा चला था चक्कर सिलिपिया से। तो चलिए बिना देरी के ले रहा और गाना हम प्ले करते नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
5: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
6: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
5: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
6: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि जो मिल ना सका उसका इंतज़ार क्यों है, जो मिल रहा है उससे इनकार क्यों है, बड़ा मुश्किल है समझाना खुद को, जिसे फिक्र नहीं हमारे उसके लिए इतना प्यार क्यों है। और बहुत खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं बिट्टू प्रजापति जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और मैम गाना बजा दीजिएगा। और यस चौधरी जी मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती दी, गुड आफ्टरनून, मैं राकेश भारती बक्सर से, और मुझे भी गाना सुनना है और देवी माता का कोई गीत चला दीजिएगा। तो जी मैं बता दूं कि आप सभी के लिए कल ही मैंने देवी माता का सर से परमिशन लेके कुछ गाने बजाए थे, और मैं आज गाना प्ले नहीं कर सकती और इसमें भक्ति गाने नहीं बजा सकती। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय आरजे सलाम नमस्ते, मुझे एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है गुरु की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंचा हुआ है।

0: और मैसेज करने वाले हैं फिरोज से घर। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके वॉइस को प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है आपकी वॉइस।
1: हेलो नमस्कार, रेडियो रिमझिम के मेरे तमाम प्यारे प्यारे श्रोता मित्र को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं भागलपुर बिहार से फिरोज शेख बोल रहा हूँ। यह रेडियो रिमझिम तो हालांकि मैं बहुत कम दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन जब से सुना हूँ तो बस उसको सुनता ही चला जा रहा हूँ, क्योंकि रेडियो रिमझिम में यह बात है कि सारे दिन भर की थकान को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो रेडियो रिमझिम है। और आरजे भारती जो हैं, भारती जी जो हैं, इनकी बातें करने का अंदाज़ा और तरीका और वो अंदाज़, वो मीठापन, ये ऐसी हैं कि श्रोताओं को, श्रोता मित्र को अपनी ओर खींच लेती हैं, जिसके वजह से अगर एक बार रेडियो रिमझिम को ट्यून कर लो फिर निकलना तो भैया आपका मुश्किल है वहाँ से, क्योंकि इस तरह के समा बांध देती हैं कि बस उसमें बंद जाने ही को दी चाहता है। बस और क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगता है। थकान को मिटाने का सबसे अच्छा माध्यम है रेडियो रिमझिम। हालांकि इसमें मैं मैसेज में बहुत कम कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अभी नया इसमें जुड़ा ही हूँ, लेकिन क्या हूँ, मैं सुनता भी हूँ और जानता भी हूँ रेडियो रिमझिम के बारे में। इस वजह से मैं कहूँगा कि हमारे दिल में बसा हुआ है रेडियो रिमझिम, जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ गाने भी लाजवाब श्रोता मित्र पसंद करते हैं, जो मैं सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि श्रोता मित्र भी ऐसे हैं जो नए नए तरीके के अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश होती है। तो हमारा ये चाह मतलब सोच है कि दिन भर जब आदमी थका रहे, जब कहीं से परेशानी हो, तो कुछ ऐसा रेडियो खोला जाए जो कि दिल की उस थकान को वो मिटा दे, तो बस वो मिटाने का काम करता है रेडियो रिमझिम। बस और क्या कहूँ, तो रेडियो रिमझिम के तमाम टीम को हमारा तरफ से पुरखुरुष सलाम है, आदाब है, नमस्ते है, धन्यवाद।
0: तो फिरोज जी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की भी फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:48 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं बता दूं आप सबको कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है, यकीन नहीं तो अपने आप को ही देख लो कितने प्यारे हो। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि धन्यवाद भारती जी मेरा गाना प्ले करने के लिए एकदम दिल से, और मैसेज करने वाले हैं फिरोज शेख जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुरु के ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर प्रोसन टेलर ग्राम धनाव से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि वाओ फिरोज भैया, बहुत ही खूबसूरत फीडबैक है और आपको बेहद खूबसूरत लाजवाब गाना। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और एक मेरी भी फरमाइश है पूरा कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आपकी गाने की फरमाइश को मैं गुरुवार को प्ले करूँगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाई गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग, और लिख रही हैं रोशनी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उत्तम सोनी जी की तरफ से और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
8: जी मैम नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? मस्त है ना? मेरे एकदम मस्त और बिंदास, आकाश होंगे आप, है ना? जी सबसे पहले जितने रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास आकाश होंगे आप, है ना। मैं उत्तम सोनी हरपुर से। जी मैम, आज मैं रेडियो रिमझिम के बारे में दो शब्द कहूँगा। वो क्या ना मैम, जब मन थक जाता है ना मैम, पूरा जब ये माइंड पूरा एकदम थक जाता है, तो इसका सुकून पहुंचाने वाला अगर कोई यंत्र है ना मैम, तो वो है हमारा रेडियो रिमझिम। चूंकि जो दिल को सुकून पहुंचाने के लिए ना मैम सबसे बेहतर यंत्र है, इसी को मानते हैं हम। क्योंकि थके हुए मन को इतना आराम मिलता है ना मैम इसको सुन के, हाय एकदम पूरा स्कैनिंग कर देता है दिमाग को। मजा आता है मैम। ये रेडियो रिमझिम जान है हमारा। और मजा आता है इसे सुन के, कहीं से भी आओ और इसे ऑन करो, एकदम दिल को ना बड़ी सुकून मिलता है मैम। मजा आता है इसे सुन के, और लिसनर भी इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं इसमें, और गाना भी एकदम पसंदीदा सब बजवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मैम। मजा आता है एकदम, और आप इसको चलाते भी हैं इतने अच्छे से ना कि सब कम पड़ जाता है आपको कुछ कहे हम। तो मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम ये जो शो चला रहा है ना, अब इससे आपको फ़ायदा क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि आपको फ़ायदा हो या ना हो, हम लोगों को बड़ी फ़ायदा होता है, और हम लोगों को दिमाग ना एकदम सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखते हैं हम, बड़ी अच्छा लगता है मैम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस शो को आप ऐसे ही चलाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम।
2: ओ कह देना हम लड़के हैं साहब, कि हम लड़के हैं साहब, शायद आप गौर से देखे नहीं हो, पागल खाने में 90% लोग अक्सर लड़के ही पाए जाते हैं। हम किसी की दुनिया बसाने के लिए अपनी पूरी दुनिया उजाड़ लेते हैं। है ना सर। मन

तो यहाँ काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है उत्तम सोनी जी की तरफ से, और क्या बात है, आज सभी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है, और इसके लिए आपका तहे दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है रात भर, और हीरोपंती का सॉन्ग है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6252-62112 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं शमशाद अली मुरादाबाद से और लिख रहे हैं जो बीवी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दो, वो खुद ही नहीं आई थी तुम्हें, तुम ही उसे पू पू पो पू पी पी और नागिन डांस करते गए थे लेकिन निकम्मे दोस्त मैंने मना किया था। और लिख रहे हैं कि कल आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की थी भारती जी। तो जी बिल्कुल, मैंने कल आपकी फरमाइश को पूरा नहीं किया था और जी आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं और मैं ज़रूर प्ले करूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ दी मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी भी गाने की फरमाइश को प्ले करूंगी। और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, उमा शंकर सिंह जुड़े हुए हैं देवभूमि उत्तराखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: भारती मैम जी नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती हैं, सुन के मज़ा आ जाता है। मैं उमा शंकर सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से।
0: और आपका भी शुक्रिया और आपको प्रोग्राम अच्छा लगा ये सुन के मुझे भी काफ़ी बेहद खूबसूरत बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मास्टर गंगा मैया और अपनी मैया में क्या अंतर है। छात्र सर, गंगा मैया हमारी पांव धोती हैं और अपनी पानी से, और अपनी मैया चप्पल और अपनी वाणी से। और काफ़ी बेहद मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से। और इसी के साथ यहां बढ़ते हैं आगे और यहां हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, और इनकी तरफ से भी वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
2: हेलो नमस्कार मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ बिहार गोपालगंज असंधि मऊआ। ओके, थोड़ा आपको गाना सुना दीजिए मैडम, लिंक भेज रहा हूँ। बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ, मेरा दोस्त है शशि रईस अंकल। ठीक है जी मैडम, थोड़ा सुना दीजिएगा।
0: तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
3: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
2: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर सहयोग योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
3: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और मैं आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँच गया है जिन्होंने गाने के पे को मैंने प्ले किया था, तो चलिए जानते हैं क्या इनका फीडबैक।
7: थैंक यू मैडम, आनंद मिल रहा है गाना सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया।
6: और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहा है कि वाओ उमा शंकर भैया नमस्ते, कैसे हैं, और बहुत ही खूबसूरत फीडबैक है और वाओ सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है उमा शंकर जी की तरफ से जो कि लिख रहा है कि भारती मैम जी को नमस्कार और आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और उत्तम भाई का हाल चल बहुत नहीं बतावा हमके। और उमा शंकर सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं शमशाद अली मुरादाबाद से और मेरे गाने की फरमाइश, यहाँ उनके गाने की फरमाइश पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे पर उससे पहले यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से और गाने की फरमाइश है तनी जा जा ए बद्रा तू चली जा। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
8: थोड़े से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है रेडियो रमजम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद बा गाना बजावे खातिर भारती जी। और इसी के साथ यहाँ इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज भी पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
9: जी नमस्ते मैडम, मैं सन्यासी रंजन बाबा गांव कुनहोमर से, और कैसे हैं आप मैडम? कहते हैं आप अच्छे होंगे और सब ठीक है, बताइए। और मैडम एक बात है, जरा गौर फरमाइएगा, उत्तर बिहार का गौरव सारण परमानेंट किसान, गोपालगंज की धड़कन, अपनी भाषा की पहचान, जो रेडियो इंजन कहता है सुनो दिल से, और हम लोग सुनते भी है दिल से, और हम 2010 से सुनते आ रहे हैं रेडियो में, सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। और रेमजी में थोड़ा सा एक चीज का बदलाव किया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, उचित रहेगा, जो उसका नाम है ब्रेक, जो आप लोग ब्रेक लेते हैं तीन गाने के बाद ब्रेक लीजिए तो अच्छी रहेगी। कृपा शंकर श्रीवास्तव से हम कहना चाहते हैं कि मेरी बात को अमल किया जाए, तीन गाने के बाद ब्रेक लिया जाए, ज्यादा उचित रहेगा। जी धन्यवाद।
8: तो काफी बेहद खूबसूरत वॉइस के साथ यहाँ पे फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, और तो तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करते हैं, और आपकी बातों पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रही हैं कि नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कहो सन्यासी रंजन बाबा जी का हालचाल बा, और जय माता दी, और आपको फरमाइश तो बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोगों को इतना अच्छा फरमाइश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और लिख रहे हैं अवंतिका का वॉइस फीडबैक को आपने ऑन ईयर नहीं किया मैम जी, तो ऐसा नहीं है जी, ज़रूर ऑन ईयर करेंगे। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अरजीत सिंह, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, तो चलिए अवंतिका जी की फीडबैक मैसेज को मैं ऑन ईयर करती हूँ।
10: सुन के मजा आ गया। मेरा नाम अमितिका सिंह है, मैं दमनप्रकुम से बोल रही हूँ।
8: और काफ़ी बेहद खूबसूरत वॉइस के साथ फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। और ये लिख रहे हैं कि भारती जी आज नमस्कार गाना के साथ जुड़ा हूँ, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा और बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी व्हाट्सएप का ध्यान दें, तो जी बिल्कुल आप पे भी मेरा ध्यान है। और नसीब अंसारी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो जी आपके भी गाने को प्ले इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके गाने को मैंने गुरुवार को प्ले किया था और फिर गुरुवार को ही प्ले होगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है राघव जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि तनी जा जा रे बदरा तू चली जा, आज दोस्तों के संग महफिल सजने दे, हंसी के दो पल दिल में बसने दे, सन्यासी बाबा का नाम हो, दोस्ती का प्यारा पैगाम हो, बादल चाहे जितना बरसे आसमान में, हर हम दोस्तों की महफिल में हमेशा मुस्कान हो, तू चली जा रे बदरा थोड़ा रास्ता छोड़ दे, आज दोस्तों के दिल को खुशियों से जोड़ दे, सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे सब पर और हमारी दोस्ती यूं ही रहे उम्र भर, जय हो जय हो। और सुपर सॉन्ग क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
11: हाय नमस्कार मैम, हम ओम साई टेलर बोल रहे हैं बंजारी रोड पुलिस लाइन के सामने गोपालगंज से। राघु जी आज जो लिंक भेजे हैं वो सॉन्ग चला दीजिएगा और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, सभी आरजे को, ठीक है? ओके बाय मैम, ये सॉन्ग चला दीजिएगा।
8: और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई और गाने की बोल है सिर्फ संडे को, तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
7: से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो रहे हैं और यो शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू भारती मैम, आपने गाना पढ़कर महफिल में जो मिठास घोल दी, हर धुन को अपनी प्यारी आवाज़ में खास बना दी, दिल से निकलता है बस एक छोटा सा पैगाम। थैंक यू भारती मैम, आपने दिल खुश कर दिया तमाम और आपकी आवाज़ यूं ही मुस्कुराहटें बढ़ाती रहें और रेडियो रिमझिम की महफिल हमेशा सजाती रहें। और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी, और जी इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। पर यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही हैं कि हेलो भारती मैम का हाल चाल बा, और

मैसेज करने वाली हैं। रेशमा पठानपति से तो बहुत बहुत स्वागत है और लिखत है कि बहुत अच्छा गाना चला था जी। और यहाँ इसी के साथ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी भाई जी के सुपर सॉन्ग दिलीप राम, और लिख रहे हैं कि लोगों की हाल बदल जाता है, जज्बात नहीं, सब कुछ समझता हूँ पर खामोशी रहता हूँ। जो लोग करते हैं मुझे गिराने की कोशिश, मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता हूँ। और दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जाए चंदा ले आवा खबरिया, बेवफाई सॉन्ग है रितेश पांडे का, बजा दीजिएगा। और मेरा नाम कृष्णा कुमार है। तो जी बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश को ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।

0: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सबको बता दूं कि आप हमारे फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां के पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए, और कृष्णा कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि नमस्ते भारती दी, और आप कैसी हैं बताइए ज़रूर, और मेरा नाम रानी कुमारी, घर हरखुआ, और मेरे तरफ से रेडियो दोस्तों को नमस्ते बोलिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज भी पहुंचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: भारती दी नमस्ते प्रणाम, और राधे राधे, और जय माता जी, और सब कोई की रानी की तरफ से भोजपुरिया प्रणाम बोले, और कैसन बानी लो जरूर बताए, और बाप रे

0: काटेंगे मेरे को सॉन्ग बजेंगे मस्ती मस्ती, उससे शो में होता मस्ती मस्ती। और हम कहने की हमें से ना कुछ कहे, बाबाजी के जरिए हुआ कि कुछ हम कहे, सब लोग इतना अच्छा अच्छा बात कहता था। हमारे ले ली थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और दी, और सबसे पहले उत्तम सोनी जी के हमारे तरफ से नमस्ते बा, और बतायम जी कैसन वानी, उम्मीद करता नहीं बहुत मस्त होकर पूछी तो झकास होके। और राउगा तरफ से लाइन राउर बड़ा जबरदस्त बोला जी, और ऐसा ही हंसत रहे ठठारा मार के, काफी निक लागल राउर हंसी। और जौन बीच में राउर बैकग्राउंड में जौन डायलॉग बोला ना काफी जबरदस्त बोला, और हमके तो बहुत अच्छा लागेला। और माँ शंकर जी जब भी निमर रहे नहीं तो मैसेज में कहे नहीं के कहो रानी का हाल बा, तो आज वहाँ का आवाज पूरा डाउन बा, का बात बा जरूर बताए। और सब कोई की एक बार रानी की तरफ से भोजपुरी प्रणाम नमस्ते राधे राधे जय माता जी। और दी सो सच में काफी निक चला था, और अगर खाना ना खेलो हम तो सुसमेर और पेट जरूर भरी। और सबसे पहले तो डायरेक्टर सर के वो रोवा के बीच में यहाँ तक ले आई नहीं, और वहाँ के जॉन ए रिमझिम स्टार्ट करनी, सब लोग दिल पर राज करेला, और खास करके तो हम ज्यादा राज करेंगे। और चली, और काफी अच्छा लगा था दी, और सन्यासी बाबा जी के गाना सुनी काफी निक बा, वहाँ के गाना एक बार फिर से सब लोग के प्रणाम बा। और कहेंगे
1: रानी जी की तरफ से काफी बेहद खूबसूरत वॉइस पहुंच रहला, और रूह के तहे दिल से धन्यवाद बा। और यही के साथ है बढ़त नहीं आगे की तरफ, और यह मैसेज पहुंच गया है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मंजीत कुमार सुपौली से जुड़े हैं और लिख रहे हैं बगिया, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूंगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा मैसेज पूरा पढ़वा करो वरना मैं भी एक रेडियो स्टेशन बना लूंगा और उसका नाम रखेंगे रेडियो टिम टिम। और मैसेज पहुंचा हुआ है संसाद अली जी की तरफ से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश भी पहुंची हुई है और कुछ लाइन भी पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि अब दर्द सुनाना नहीं आता, छोड़ दो इश्क की बातें, मुझे दिल लगाना नहीं आता, इतना रुला गए हो कि आंखें भी थक गई हैं, अब चाह कर भी मुझे मुस्कुराना नहीं आता। और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है रीस में जुल्फे ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763 या 70705042 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: इस ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सबको बता दो कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली जी की, लिख नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ वॉइस के माध्यम से फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए शामिल करते हैं और जानते हैं क्या इनका फीडबैक मैसेज।
6: हेलो नमस्कार भारती जी, आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। रेडियो रिमझिम क्या है, एक दिल का सुकून है। 4 घंटे कैसे निकल जाते हैं भारती जी आपके प्रोग्राम से जुड़ के, पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम जैसे गरीबों का मैसेज का भी ख्याल रखा करो। रेडियो रिमझिम से आपसे सभी से बहुत प्रेम हो गया है जब से सुनते हैं, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नाराजगी की और राजी तो चलती रहती है, कृपया कोई भी दिल पे बात ऐसी ना लिया करो। कोई भी सोता है टाइम तो लग जाता है। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
5: और इसी के साथ यहाँ बेहद खूबसूरत फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद जी की तरफ से, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। और आज क्या बात है, सभी की तरफ से काफ़ी बढ़िया फीडबैक मैसेज और काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से, और लिख रहे हैं नमस्ते मैम, हमको भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, प्लीज़ मैडम जी आज भिजा दीजिए। और जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा है हमारे पास सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि चारों तरफ जय माता दी छाई हुई है, फिर ये युद्ध वृद्ध आश्रम में किसकी माँ आई हुई है। और काफ़ी गहराइयों से बात लिखी है सन्यासी रंजन जी ने, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि क्या हुआ भारती जी, हमारा गाना नहीं बजेगा क्या? तो ऐसी बात नहीं, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और लिख रहे हैं कि भारती जी हम डीके सिंह मलेशिया से, और मेरे भी एक गाना है, बजा दीजिएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि तेरी आँखों में देखा तो इश्क का रंग गहरा हो गया, अब हर पल तेरे बिना अधूरा सा मेरा सवेरा हो गया, तेरे ही यादों में खोए रहते हैं दिन रात, तू ही तो है मेरा पहला और आखिरी साथ। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गाने की बोल है दिल देता है रो रो दुआई, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
2: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
4: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
6: शक्ति की उपासना, आस्था की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर आया है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के जदयू जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पटेल जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर परिवार खुशहाल रहे और गोपालगंज में आपसी प्रेम, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।
6: विजयादशमी का ये पावन पर्व हम सभी को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। श्री प्रमोद कुमार पटेल जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। शुभ दशहरा।

0: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और डी के सिंह मलेशिया से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सरफरोज अली जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रानी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और रानी जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, और आपका हंसी बहुत अच्छा लगता है जी, और लिख रहे हैं कि रानी जी आप कल ज़रूर जुड़िएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी, मेरा भी गाना बजा दीजिए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। बिल्कुल, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: तमन्ना खाती को सलामपुर से।
0: जी जी, और कौन से गाने की फरमाइश है बता दीजिए।
1: बिना बुलाए ले जो मैं वक्त से याद न हो ये त्योहार।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है? तो चलिए आपका गाना हम प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थे बिना बुलावले गोरा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, जो प्ले नहीं की थी, अब प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, बेरी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बहुत सुपर सॉन्ग जिन भाई का भी था, बहुत फैंटास्टिक सॉन्ग। मैं दिलीप राम दिल्ली से।
0: तो अभी दिलीप राम काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना गा रहे थे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश जो पहुंची है, और गाने की बोल है वो तो गाना है माता जी के ऊपर, तो मैं नहीं बजा सकती आपके गाने को, आप तो रूल्स जानते ही हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि जन्म देने वाली माँ को खुश रखो, ये 9 दिन वाली माँ अपने आप खुश हो जाएंगी। और जी बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और त्रिवेणी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं मनोज शर्मा कररिया से जुड़ गया हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा हूँ, और मेरी भी एक फरमाइश है। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, वाव दिलीप भैया नमस्ते, और लाजवाब दिल देता है दुआई। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि रानी जी लिख रही हैं कि नाइस सॉन्ग। और लिख रहे हैं कि हेलो मैम कैसी हैं, और हम मस्कट ओमान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि मदन चौधरी ग्राम असनी से जुड़े हैं, और मुझे गाना सुनना है। और गाने की बोल है सावन आया बादल छाए। तो चलिए बिना देरी के हम गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज के बाद। और जिनके भी गाने को मैंने प्ले नहीं किया है सारे गाने को दोपहर के बाद प्ले किया जाएगा, तभी आप सभी इंजॉय करते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अब है हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते। युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
5: इस मैच का पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मार्ट ऑफ इंडिया की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
6: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
7: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
0: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं।

0: हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडियन ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: भक्ति की शक्ति, आस्था की ज्योति और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व है नवरात्रि और विजयादशमी।
3: इस पावन अवसर पर श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी, प्रदेश महासचिव जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 मांझा ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
2: उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हर परिवार में सुख समृद्धि आए और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे का भाव और सशक्त हो।
3: ये विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशाओं का संचार करे तथा सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। श्री अमरेंद्र कुमार बारी जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: जय माता दी, शुभ दशहरा।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने

0: योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम।
4: सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भारती जी को और मनोरमा जी को, और मेरा नाम सोनू कुशवाहा है और मेरा गांव छोटका साख है रामदास का रहने वाला हूं, और उसका गांव जिला गोपालगंज बिहार, और अभी हम काठमांडू नेपाल से जुड़े हुए हैं और यहां आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमारे साथ भी सुन रहे हैं जिनका नाम है मंसूर आलम, रियाजुद्दीन मियाँ, अलाउद्दीन अली, अशोक कुशवाहा जी, और गाना सुनना चाहते हैं और छठ का गीत सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल हिंदी गाने और भोजपुरी गाने की फरमाइश की जाती है और भक्ति गाने हम प्ले नहीं कर सकते। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि माता रानी की भजन सुनवा दीजिए। तो अभी मैंने बताया कि मैं आप सभी को माता रानी के गाने नहीं सुना सकती और इसकी मुझे इजाज़त नहीं है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोहब्बत को जब लोग खुदा मानते हैं, प्यार करने वाले को क्यों बुरा मानते हैं, जब जमाना ही पत्थर दिल है फिर पत्थर से लोग क्यों दुआ मांगते हैं। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से एक बार फिर से, तो बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं रानी कुमारी हरखुआ से जो कि नमस्ते उत्तम सोने जी, आप कैसे हैं, और मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कल मैडम जी आपने मेरा गाना नहीं बजाया था, और मिथिलेश चौहान बोला तनी और प्रणाम बा भोजपुरिया गाना बजा दी, और भोजपुरिया एक्सप्रेस में कल हमारा गाना नहीं ही बजेले आज जरूर बजाएं। तो चलिए बिना देरी के लिए हम रोवा गाना के प्ले करता नहीं, और गाना के बोल बा तितली शहर के गाना प्ले कर देनी, एंजॉय कर लिया रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे ए चाची,
1: जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नू।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगे बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और आप सबको बता दो कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हर चैनल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंच गया है, जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद मैडम जी गाना बजाने के लिए, और बहुत बहुत प्रणाम बाटे, और दिल से प्रणाम बा, और हमारे दोस्त लोग भी प्रणाम कहले वालों, और पूरा रेडियो रिमझिम के काम करे वाला आरजे लोग के प्रणाम बा। और लिखत आनी कि गुड़ छुके गुड़ लागत आनी, और मैसेज करे वाला वानी मिथिलेश चौहान। और एक साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे की लिखा था नहीं कि लिखा था नहीं कि भारती जी आज का बात बा कि इतना हंस रहल वानी, और हमरो के आपन राज बताई आज रोवलो दोनों जानी साथ में बैठल वानी का ऐसे हंसत है नाथ जी, तो ऐसे कोनो बात नहीं के। और मैसेज करे वाला वानी धनेश मिश्रा जी, और हमारा हंसी के राज तो रोए लोग वानी, और इतना मजेदार शायरी और चुटकुला भेजत रहे नीलो जी के पढ़ के हमके भी थोड़ा बहुत हंसी आ ही जाला, और खुद के थोड़ा बहुत कंट्रोल ना कर पाए नहीं कभी कभी तो हंसी ही देनी। और एक साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है कि मैडम जी हो एगो शायरी बा भोजपुरी में, और लिख रहे हैं कि जवन बा दुख दर्द लेके झेलत रहिए, जौन बा दुख दर्द लेके झेलत रहिए, दिल लगा के काहे दिल तोड़त बाड़ू, कहत दिलवे निकाल दिल लेके खेलत रहिए। और यह मैसेज पहुंचा हुआ है पाजी यूपी चौवन से, जो कि लिख रहे हैं कि हाजिरी लगा दीजिएगा मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि मंजीत कुमार जी की तरफ से, और सुपौली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं पहले कॉल और जानते हैं इनकी फरमाइश। हेलो
0: नमस्कार भारती जी।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में। जी सबका कॉल उठाया जा रहा है, अभी तो देखी हूँ तो कॉल आपका उठाई हूँ। गाना बज रहा था उस टाइम?
0: नहीं नहीं मैसेज कर रहे।
9: हो सकता है कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, अभी देखे हैं तो उठाए हैं। जी जी ऐसा थोड़ी है, है। जी जी कॉल भी उठाया जाता है।
0: मैसेज कॉल करने वाला, मैसेज करने वाला नहीं है
9: जी,
0: हम लोग कॉल के माध्यम से बात कर सकते
9: हैं।
0: जी इसीलिए मजबूरी है।
9: जी जी आप अपना नाम क्या बताए? जी जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: गाना हमको सुनना है लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा
9: की। जी और गाना किसी को सुनवाएंगे?
0: जितने लोग सुनने वाले हैं सबको
9: कहा। ओके तो आपका गाना हम प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 91.4 एफएम में। नमस्कार।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, लाल दुपट्टा उड़ गया है मेरे हवा के झोंके से और मुझसे शादी करोगी मूवी है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि तेरा धोखा भी मंजूर था, तेरा छोड़ना भी मंजूर था, एक बारी बात बता तो देता मुझे तो मेरा मरना भी मंजूर था। और लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास धनेश जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि भोजपुरी में अर्ज किया है, कहना है कि लड़का रो नहीं खे सकत, लड़की खुल के हंस नहीं खे सकत, लड़का के घर बैठला पर ताना मिलेला, लड़की के बाहर गईला पर सवाल उठेला। और लिख रहे हैं कि लड़का पर मजबूत बने के दबाव बा, लड़की पर संभल के चले के। और लड़का सोचेला कि लड़की के जिंदगी बढ़िया बा, लड़की सोचेला कि लड़का के जिंदगी बढ़िया बा, पर सच ई बा चाहे लड़का होके चाहे लड़की, दोनों जने आपन बंदिश में जी रहल बाड़े, और मुकाबला एक दूसरा से ना वो सोच से होके के चाहे जे दोनों के खुल के जिए नहीं खे दे। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नहीं सुनाइएगा मेरा गाना, अब चलता हूँ, बाय बाय, आप सभी को नमस्कार, दिलीप राम। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपका गाना माता जी का था इसीलिए मैं नहीं प्ले कर रही थी, और दूसरा गाना बताएं तो ज़रूर मैं प्ले करूँगी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, पाजी यूपी 54 से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है नहीं नहींयो मिलो हमसे ज़्यादा, और बादल मूवी का गाना है। गाने की बोल है ना मिलो हमसे ज़्यादा और बादल मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी के हम गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-99-27-982।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776695। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी 54 से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि मैं सुबोध कुमार पीतर नारायण से, और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से, और लिख रहे हैं कि नमस्ते हम आपको भी, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई जो कि लिख रहे हैं कि मैं मनीषा कुमारी जो कि गोपालगंज की रहने वाली हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल है लिंक के माध्यम से। तो चलिए प्ले करते हैं आपके गाने को और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

तो अब हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, और लिख रहे हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता, हमें ऐसी किसी को तड़पाना नहीं आता, सुनना तो चाहते हैं हम मनोरमा मैम। और लिख रहे हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता, हम ऐसे ही किसी को तड़पाना नहीं आता, सुनना तो चाहते हैं हम मनोरमा जी यानी रानी मुखर्जी की आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता। और लिख रहे हैं कि दिल से प्रणाम जब, दिल से प्रणाम बाजी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है एक बार फिर से, और बहुत खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि गणेश कुमार मिश्रा जी हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मनोरमा जी, प्रेम मरदेसिया थोड़ा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं कि वेरी गुड मॉर्निंग मनोरमा जी, और लिख रहे हैं कि कैसे हैं आप, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो रेडियो रिमझिम, सभी आरजे और सभी दोस्तों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और लिख रहे हैं कि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, और लिख रहे हैं कि मैं राजेश प्रसाद सूरत गुजरात से आपके शो में जुड़ गया हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं मनजीत कुमार सुपौली से, और मुझे भी गाना सुनना है, प्लीज़ मैम बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम बिना देरी किए प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंजिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी एक बार फिर से लग चुकी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, आपके रेडियो रिमझिम में हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। और लिख रहे हैं कि नयपारा भिरई जिला बलोद छत्तीसगढ़ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और लिख रहे हैं कि हम कोर्ट में हाजिरी दे के आ रहे हैं बलोद से, और लिख रहे हैं कि अभी रोड में हैं। तो चलिए, आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैं सुबोध कुमार पीपरा नारायण से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, प्लीज़ दीदी बजा दीजिए, और गाना डेडिकेट करना चाहते हैं करिश्मा जी को, मनीष जी को, और मनोरमा जी को, रानी जी को, अनुज भाई को, बिट्टू भाई को, सोनी दीदी को, भारती दीदी को, सोनू भाई को, और लिख रहे हैं कि पंकज भाई प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए, आपके गाने को हम बिना देरी के प्ले करते हैं, और गाने के बोल हैं एगो रे से नूरो का कराना हुआ। तो चलिए, आपके गाने को हम प्ले करते हैं बिना देरी किए, और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, बेहद खूबसूरत।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी।
1: रउआ गाना कैसा लगल है? रउए खातिर गाना रहल सर,
2: सुनते हैं।
1: हम और करिश्मा और गणेश भी एक ही साथ सुन रहे हैं, थैंक यू।
0: तो मैं बता दूं कि गाना बहुत

जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो क्या हाल चाल है जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और प्लीज़ नाम मेंशन करिए। और मेरा हाल चाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश है और प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM की सॉन्ग।

0: माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों का संचार करे।
1: इसी मंगल कामना के साथ गोपालगंज के कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने समस्त जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हर परिवार में सुख समृद्धि आए, समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना मजबूत हो तथा हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आए।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं। श्री ओम प्रकाश गर्ग जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:41 हो गए हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे आ रहे हैं।

0: मनोरमा जी, गाने बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल भोजपुरी सुनना कम कर दिया हूँ, हिंदी सुन रहा हूँ, इसलिए आपको गजल सुनाया हूँ। कैसा लगा ये बताइएगा
1: जी। तो बहुत ही अच्छा लगा, और सारे गाने की फरमाइश अच्छे अच्छे करते हैं, अच्छा लगता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यार यहाँ पे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, हंस के हंसा के हमके पढ़ावल गई बा, केहू के दिल मत तोड़िए ऐसा बात बतावल गई बा, तोहरा वजह से केहू के आँख में आंसू ना आवे के चाहे ऐसा संस्कार हमके सिखावल गई बा। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी चौहान से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी एक बार फिर से। और बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखे हुए थे, अच्छा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, मनोरमा मैम नमस्ते, क्या हाल है मैम जी। तो जी मेरा भी ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि, मैं मनीष कुमार, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि, और लिख रहे हैं कि, तेरा धोखा भी मंजूर था, तेरा छोड़ना भी मंजूर था, तेरा धोखा भी मंजूर था, तेरा छोड़ना भी मंजूर था, एक बार और लिख रहे कि, एक बार बता तो देते, मुझे तो मेरा मरना भी मंजूर था। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जय किशोर प्रसाद जी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है। तो बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के बेहद खूबसूरत सॉन्ग।
2: अरे का बोले भाई, चलो तुमको फ्लैश

अभी हम लोग बहुत ही बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भोजपुरी में अर्ज किया हूँ, कहना है कैसे भुलाई जाई, और लिख रहे कि कैसे भुला जाई हम ओकरा के, जेकरा के कबो हम आपन पूरा दुनिया समझत रहनी। और लिख रहे कैसे भुला जाई हम ओकरा के, जेकरा के कबो हम आपन पूरा दुनिया समझत रहनी, जेकरा के एगो आवाज सुन के चेहरा पर मुस्कान आ जात रहे, आज वे आवाज सुने खातिर हमार दिल तरसत बा। और लिख रहे कि हम ओकरा के खाली चाहे ना रहनी, अपना रूह तक में बसा ले रहनी, यही से आजो जब ओकर याद आवेला आँख ना पूरा वजूद रो पड़ेला। और लिख रहे कि लोग कहेला कि समय के साथ सब भूल जाई, बाकी जेकरा के दिल उम्र भर खातिर चाहेला, और लिख रहे कि बाकी जेकरा के दिल उम्र भर खातिर चाहे होके ओकरा के समय ना खाली मौत ही दिल से निकाल सकेला। और बहुत ही अच्छे लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ मैम मेरा भी गाना चला दीजिए। और लिख रहे हैं कि मैं मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर सासाराम बिहार से, और लिख रहे हैं कि छुपा रुस्तम का कोई भी गाना चला दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। बेहद

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स दिल से मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता जो कि आलमपुर सासाराम बिहार से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यार यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि लबों से कुछ ना कहो तो ही बेहतर है, लबों से कुछ ना कहो तो ही बेहतर है, तुम्हारी आवाज़ का जादू ही काफ़ी है, सुनकर जिसे खिल उठती है ये रो मेरी, आपकी हर बात में वो मिठास भरी है। और लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ में वो खुमार है जिसे सुनकर दिलों का सुकून मिलता है। और लिख रहे हैं बातें तो दुनिया में हजारों हैं पर आपकी आवाज़ से ही दिल खिल उठता है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं श्याम चौधरी जी जो कि मलेशिया से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और लिख रहे हैं कि ये शायरी सिर्फ आपके लिए है, तो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखे हैं और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसी के साथ तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291। यदि कॉल करने के लिए कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप 72-77-16-65 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुंच रहे हैं, और लिख रहे हैं कि इसी के साथ बाय बाय बोल रहा हूं आप दोनों को, जाने देने का मन नहीं करता है लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और लिख रहे हैं कि शो ख़त्म होता है उस समय दिल टूट के चकनाचूर हो जाता है। जी तो ऐसा नहीं है, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले दिन। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं बाय बाय मैम, तो सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं। तो चलिए मैं भी लूँगी आप सभी से विदा। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची इसको पूरी करते हुए आप सभी से लूँगी विदा, और मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
12: आई भैया, एक जानी के पति परदेश से बारे, गृहिणिया घरे बारी, अपना पति के फोन लगवली है और ये का कहतरी भैया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
2: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
2: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: देखी जब हमनी के माता के गर्भ में रही ले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी। अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुण गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ क्या कहतनी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के

0: की खरीदारी।
1: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
2: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
1: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
3: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
1: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
3: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
4: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
1: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
1: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
1: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
1: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लुतत्व से मोहब्बत हो जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
2: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
1: आप कौन कौन मैम बोल रही हैं आप?
2: मैं भारती।
1: अच्छा जी, भारती भारती, अभी तो उनका नंबर था, आज भारती जी का नंबर लगा है।
2: जी
1: क्यों इतना लेट से? क्या घर चली गई थी क्या?
2: नहीं तो
1: वो दिन दो तीन प्रोग्राम वो दे चुके। वो क्या नाम है उनका?
2: मनोरमा जी।
1: मनोरमा जी, तो फिर आप जो है इतने दिनों से कहाँ?
2: हम
1: तो समझे यहीं पे है, लेकिन इस प्रोग्राम में आप नहीं जुड़ती है ना? अब पहले जैसा भारती जी नहीं है, बदल गई है?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बदले नहीं है। जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना कर लेता है।
1: कर लेता है। पहले आवाज भी बहुत आपका सोलो था, पहले बहुत कुछ था। अब तो मैं अपना प्रोग्राम में आप गाना भी गाती है, औरतें जो है बड़ी तारीफ कर रही हैं कि मैडम जी आप गुनगुनाती हैं तो बड़ी अच्छा लगता है। आप पूछती हैं कि आप गाती हैं कि नहीं, हाथ नहीं और शर्म से झुक जाते हैं लोग। तो एक सुना था कि वो कह रहे हैं कि आप गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा हम गुनगुना लेते हैं कभी। ऐसा सुनने में हमको मजा लगा आपका प्रोग्राम का, तो सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप गुनगुनाते रहिए अपने प्रोग्राम पे भारती जी।
2: बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ।
1: तो भारती जी आज कौन सा गाना सुनवा?
2: बता दीजिए,
1: आपने बता दीजिए कोई गाने का बोला भी बता दीजिए कि मैं ये गाना आपको सुनवा रही हूँ। बोलिए हमारे लायक, मतलब हमारा उम्र जो है तो ज्यादा है ना, 50+ है मेरा, तो अब उसके हिसाब से बोलिए कौन गाना सुनवा रही है। हम बड़ी गुनगुनाते हैं इसके लिए हमको पूछना पड़ा, कहना पड़ा। बोलिए, आज आपको हम घेर डाले हैं गाने के पीछे। अच्छा, कोई गाना है धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया, ऐसा कोई गाना है?
2: है,
1: एक महावीर जी है हमारे कपरपुरा बाजार पे, वो कहते हैं कि ये गाना का रिक्वेस्ट किए ना, धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। थोड़ा उतने माइंड शॉर्ट आदमी है वो, बराबर कहता है वो हमसे ये गाना सुनवाइए ना। बराबर रेडियो जो है कान पे लगा कर रखता है, दुकानदारी करता है, पूरे दिन रेडियो बजता है उसका।
2: मूवी है जुर्माना और
1: जो भी हो, ये गाना जो है ना, जो धोती को फाड़ के रूमाल कर दिए, ये गाना सुनवा दीजिए। मोहबी जी खुश हो जाएंगे गाना सुन के, कहेंगे वाह वाह मेरा गाना बजा।
2: बिल्कुल,
1: हाँ तो वही गाना तो बजा दीजिए मैडम।
2: हाँ, और गाना उन्हीं को डेडिकेट करेगा।
1: बस बस आपको अभी तो हम महावीर जी को डेलीकेट करेंगे और कहेंगे का हो महावीर जी, कैसा लगा गाना वहाँ हमारा बताइए, दुकान पर आए तो वही गाना सुनवा दीजिए।
2: ओके,
1: ठीक है, ओके, तो रख रहे हैं।
2: ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: खरीद
0: ठीक बा, आपन बताए।
2: बढ़िया बा, का होता।
0: बस रोबा सबसे बात होता।
2: और सब बताओ मैडम।
0: और सब पे ठीक बा, तब का होता अभी।
2: जुमा हाँ, थोड़ा सा सफाई होता।
0: अच्छा जी, हाँ हाँ चलिए बढ़िया बा। कब कौन सा गाना सुने बा?
2: गाना नहीं है, गाना रब न करे ये जिंदगी, रब न करे ये जिंदगी, जिंदगी किसी को दगा दे, वही गाना चलेगा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
2: सबसे पहले आपको, सुनने वाले सभी लिसनर को।
0: जी जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: लाडली बोल रही हूँ नवादा से।
0: जी आप मुझे तो मालूम। चलिए फिर बढ़िया है।
2: तो चल रहा है अच्छा से।
0: हाँ हाँ
2: चलिए ठीक है।
0: ठीक,
2: आप मेरा अपना नाम बता दीजिए थोड़ा।
0: मेरा नाम भारती है।
2: अच्छा भारती भी आई है क्या? है
0: हाँ।
2: नहीं आई,
0: नहीं वो भी है।
2: चलिए ठीक है।
0: ओके गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
2: थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो।
4: हेलो।

0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में। नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते, कैसे हैं मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक है।
0: जी नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मनीषा कुमारी तरह सुंदर से।
0: जी, तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: तू बसी हो कर कर अंदर में, हम ढूंढते रह गए मंदिर में।
0: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी मैम, आपको और मनोरमा मैम को और अपनी दीदी को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और मेरा छोटा भाई है उनको भी।
0: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम,
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: तो फिर बोलो तनी कोरी मैं अगला देवल लाखन
1: से। जी, क्या हाल चल बा रहा?
0: बिल्कुल ठीक बा। रेवा कैसन बानी?
1: हम तो ठीक बानी
0: जी जी।
1: अभी का होता है?
0: अभी तो क्लास में मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के रेवा से बात कर रहा था।
1: काफी अच्छा, भोजपुरी बोल लेता नहीं रेवा?
0: कोशिश करता रहा की भोजपुरी बोली।

0: ऐसे ही कोशिश करत रहे हम बिल्कुल अच्छा से बोले, अभी तक काफी अच्छा बोला था। नहीं
1: हम सोचने की आज के लास्ट टाइम हो गए, 12:31 हो गए, अब हमारा फोन नहीं लगे तो लाइन में हम रही तो आप रिसीव कर लेनी।
0: जी जी
1: अभी तो पुराना माई फिल्म हो गाना सुरेश वाडकर के वाइज।
0: गाना के बोल बता दी।
1: गाना के बोल है चलल जाला भौजी, इस तरह के बोल है चलल जाला हो भौजी हमारा गाड़ी, इस तरह के कुछ बोल है। गाना बहुत अच्छा बात, सुरेश वाडकर और कौन को लेडी सिंगर है नाम में याद नहीं थे।
0: चले कोनो बात ना, हम देख के बजा दें।
1: जी जी जी
0: और गाना केहू के सुनाहू के बाद।
1: जी जी रोवा के सुनाई हम सुनी और जितने भी रेडियो रंजन के लिसनर है सुनाना उसी चाहत रही।
0: जी जी कर और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी नमस्ते, प्रणाम आजादी राधे।
6: नमस्ते, प्रणाम आजादी राधे।
7: अस्ते अस्ते काहे बोलत नहीं,
6: का हो गई बा आज रुआ
7: और घर फंस गई बा
6: कहे की का हो गई, काहे से बोलत नहीं,
7: पहचान कही
6: नहीं आई पहले बनी वही से फंसा था का।
7: और का बोले ला बीएफी कल भूख रही न, तो फल फलहारी ज्यादा खा ले बनी वही क्या असर। और बताई नाश्ता हो गया?
6: नाश्ता तो हो गया।
7: और सुनी ना, आज की रिकॉर्डिंग जितना चलल बाबा मेरा खाली रौरे फरमाइश वाला रवा पसंद की एक दो गाना अपने पसंद से लोग सुन ले रही है।
6: बहुत है लो की रवा बहुत दिनों से बचा था नहीं, रवा अपना पसंद से बजाई बजाई।
7: और वही में तो कसर हम पूरा कर ले रही और गाना बहुत अच्छा सेलेक्ट कर ले रही और बहुत अच्छा लग रही जी,
6: एकदम बिल्कुल रवा पे सूट करे वाला गाना करके डल ले रहा हूँ।
7: हमके पता रहे वो गाना के एक लाइन हम समझ चुका रहे, सर के बारे में अगर हम बोलबो करे तब पूरा दिल से बोले मैं सिखाई।

0: सो तो, और खास करके वहां के जनता नहीं, जब वो संडे के दिन आवे नहीं तो इतना धाकड़ भोजपुरी बोले नहीं कोनो कोनो शब्द में, बहुत काफी अच्छा लगेगा। और हाल ही में ये संडे के दिन एगो बात बोलत रही, कहत रही जी एगो चना अकेले भाण ना फोरी।
1: जी, ये तो बात है।
0: हाँ, तो सुन के काफी अच्छा लगे। तो आज एगो छठ के सॉन्ग सुना दी,
1: बिल्कुल बता दे कौन सा।
0: जोड़े जोड़े फालवा, पवन सिंह जी की आवाज में,
1: अच्छा,
0: और पूरा छठ के माहौल और नवरात्रि के माहौल इस सब हमनी के मुंह पर आ रहल बा। और बताई, नवरात्रि रवलों के गांव में कहिया चढ़ाता?
1: संडे कहीं ना चढ़ाता।
0: हाँ, संडे की भी चढ़ता। और दी एक गाना सब लोग के सबारे रही रानी की तरफ से का। और
1: बिल्कुल, रेडियो टीम से मैं कॉल करनी है खाती। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बाय।
1: बाय।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो और 90.4 एफएम में।
0: सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ, हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज से बात कर रहे हैं।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: सब ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: जी, हम लोग का भी ठीक है।
0: चलिए मैम, ठीक रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैडम गाना सुनना चाहते हैं, बंधन फिल्म का जो हिंदी गाना है, बंधन फिल्म।
1: हाँ,
0: सूरज कभी गगन से, चंदा कभी सूरज किरण से।
1: जी जी है।
0: हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मैम, सुनवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको और रेडियो के जितना हमारे परिवार है उन लोगों को।
1: जी,
0: और हमारे दोस्त लोग है सुफी आलम और मिराज आलम, यूसुफ अली, जितेश शर्मा, गोविंदा शर्मा, मोहम्मद रूफ, बस इन लोग को सुनवाना चाहते हैं।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ओके।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते दीदी
2: जी। नमस्ते,
3: विकास कुमार हिंतापुर।
2: जी जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया बानी, आप कैसन बानी मैडम?
2: हम तो ठीक बानी।
3: अच्छा, सब नाश्ता उस्ता हो गई बेटे?
2: हाँ, नाश्ता हो गई बा।
3: अच्छा, सब और सब बताई, मौसम वोसम कैसन हटे गोपालगंज में?
2: अभी तो गोपालगंज के मौसम बढ़िया बनत आवे।
3: अच्छा, संडे के दिन तो नवरात्र चढ़ जाये नो माता जी के। माता जी आ जाए धरती पर।
2: बिल्कुल आए
3: परकट से निकल करके।
2: तब और सब
3: तब रौरा पूजा उजा करी ले कि ना नवरात्र में? भूखी ले?
2: पूजा करे नहीं, भूखे नहीं, बस दूगो अभी भूखे नहीं, पूरा ना भूखे देला लो कि जाऊं के बाहर आऊं बा तब परेशान हो जाए।
3: अच्छा, दुए को भूखी ले? अच्छा ना, वही में ड्यूटी नु करे बनू। सही बात बटे। और काम धाम नहीं था तो मैडम वही करिए बैठल बा, मशीन वशीन बंद बटे तो।
2: अच्छा, छुट्टी बा का?
3: ना छुट्टी ना, कंपनी में हम भी बैठल बटे एकदम।
2: चलिए बढ़िया बाबे, आराम करे के मिलत आवे और क्या चाहिए।
3: काम धाम रहेला तब न थोड़ा मन उन लागत रहेला ना।
2: अच्छा, कब कब आराम करे के चाहिए, ज्यादा काम ना करे के चाहिए।
3: भाई दो चार दिन से खाली आ करके बस बैठला ही जाई जाता है कंपनी में।
2: कौन बात है,
3: 8 घंटा
2: हाजिरी
3: बना था 8 घंटा के। सब और सब बताई, घर में सब सबको सही है ना?
2: घर में सब क्यों ठीक बा?
3: मेहनत करके बहुत लगाओ जला ना फोन रोल से बात करेगा।
2: जी जी, क्यों क्यों कहे नहीं लो कि हम इतना बार लगे नहीं है, सुन के बुझाला कि कितना मेहनत करे के पड़ा था।
3: नहीं, हम ही कबो कबो लगा दिले मैडम रोल से, क्या बताई 40-50 साल लगाई ले तब ये खाली लगेगा।
2: अच्छा,
3: क्या मैंने 49 बेर लगाए तो 50वा हाल ही में लगी रहा फोन। अब बुझ जाए कि कितना देर वेट करे के पड़ेगा।
2: तो बता दी कौन सा आज गाना सुने?
3: आज कौन सिंह के भक्ति गाना सुने?
2: गाना के बोल बता दी।
3: निमिया के छाओ में 9 दिन रहलू माई संग हमारे गाँव में, यही वाली मैडम।
2: जी जी, और गाना क्यों के सुनेबो करे?
3: सबसे पहले आपके सुनवाई आप लोग के जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाला हो सबके।
2: जी, गाना तो बहुत अच्छा बा, सुने तो सबके सुनी, अच्छा गाना बा।
3: दिल छू दे वाला गाना बा एकदम। दसवीं के दिन ना बाजेला ना मैडम, लेकिन शुरुआतों में बाजेला।
2: कोनो बात ना, पहले बुलावल तो जाओ माता जी के, ओकरा बाद
3: जरूरी बटे।
2: चलिए ठीक बा, तब और गाना प्ले करता नी।
3: अच्छा,
2: सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठीक है, नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार, हम मधु सरिया से बोल रहे हैं, राजीव माँ।
0: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है।
0: तो क्या कर रहे हैं अभी?
1: अभी क्या कर रहे हैं, बाजुआरी में कहाँ काम चल रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं?
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है,
0: बता दीजिए। गाने की बोल बता दीजिए।
1: गाना है कि साइकिल में साइकिल लड़ाई बबुलिया है।
0: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: रंजीव सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: हेलो,
7: अस्सलामुअलैकुम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: कैसी हैं?
6: जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
7: नाखून का हो गया?
6: जी मेरा तो हो गया है।
7: गाना सुना दीजिए।
6: बिल्कुल सुनाएंगे, नाम बता दीजिए पहले अपना।
7: अफसोस सी पठान पट्टी से।
6: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: वो हिंदी गाना नहीं है, इश्क दीफानी। वही हिंदी गाना बता दीजिएगा, इश्क दीफानी लड़ गई, वही है।
6: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
7: जिया का, जिया को, साइन अपी को, आलिया को, सलमान को, रोशनी को और सबको, रेशमा जी को।
6: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में।
0: सलाम सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे इसमें बोलते हैं पठान पटी से।
1: जी, कैसन बानी रहुआ?
0: ठीक बानी हम अपन बताई।
1: हम लोग ठीक बानी सर।
0: ठीक बानी रहुआ हम नरमा में।
1: हम की ठीक बानी।
0: नाश्ता पानी सब हो गया?
1: हाँ,
0: तबियत तो ठीक रहा था ना?
1: बिल्कुल एकदम ठीक रहा था।
0: काय मेहराइल बोलता नहीं तुम्हें दिक्कत होगा जी?
1: ना जी, कबो कबो बोलत बोलत ना बोले के मन करेला।
0: तो पानी लेके आई?
1: पानी रख ले वानी सन।
0: रख ले वानी पीने के ना पानी होने?
1: पीवे वानी सन, पानी ना रहो तो कैसे रहो।
0: हाँ ठीक है कहा था। अरे घर पर में सबको ठीक बा?
1: हाँ सबके ठीक है।
0: बड़ा घर गाना गाओ तो नहीं आए? बेईमानी करते नहीं?
1: बेईमानी नहीं की करत तो एक दिन तक जेबे कभी मन पहले रहुए तब वो भोजपुरिया एक्सप्रेस में।
0: हाँ भोजपुरी गाना था। रितेश पांडे गाना था ना?
1: हाँ लिया वो खबर
0: तो भवानी गा के सुनाई?
1: बिल्कुल सुना जाये।
0: सुने नहीं जब चालू हुआ तो सुने नहीं तो पहले ही बता देना कि बजा दू गाना। और सब बताई?
1: और सब तो ठीक बावे। तब खाना पीना हो गई बा?
0: खाना नाश्ता हो गया, खाना हो गया, दोनों हो गए।
1: हाँ टाइम भी तो होता है, एकदम लेट हो जाए।
0: खाना बना दे बानी जन नहीं? नाश्ता पंदा सुन रही भाई लोग।
1: तो बताए कौन सा आज गाना सुने?
0: गाना सुने के बाद हिंदी गाना सुने के बाद
1: बता दी।
0: हम अपनी मोहब्बत की इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे।
1: और गाना सुनाऊं के बाद?
0: हाँ सुनाओ के बाद। रौरा बानी, मुनारमा में बानी, रानी बाड़ी, करिश्मा बाड़ी, उनका भाई बड़न, निसार बड़न, और जितना लोग सुना था सब फिर सुनी रेशमा की तरफ से गाना।
1: बिल्कुल गाना प्ले करता नहीं
0: जी? ठीक बात
1: सुनते ही रेडियो रमजान 90.4 एफएम।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: हेलो मैम
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: अस्सलामुअलैकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
5: ठीक है
4: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक है।
4: आपका नाम बता दीजिएगा।
5: रोशनी।
4: रोशनी,
5: हाँ।
4: कहाँ से?
5: पेघान पट्टी से।
4: अच्छा जी,
5: और सब बताइए।
4: और सब ठीक है?
5: अच्छा हो गया।
4: जी बिल्कुल हो गया है। मेरा आपा हो गया?
5: हाँ मेरा हो गया।
4: तो कौन सा गाना सुनना है? हेलो,
5: तुमको मंगा दीजिएगा।
4: जी
5: हाँ,
4: गाना बता दीजिए मुझे।
5: कोई भी बता दीजिएगा, भोजपुरी गाना।
4: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
5: हाँ, पहले सुनाएंगे आपको और मेरे अम्मी को और रानी चाची को और जिया को और तारा को और साहिन को और रेशमा जी को।
4: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जय भवानी, मैं बद्रीनारायण मुनि बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कहाँ से हैं आप?
1: भनही से।
0: अच्छा जी,
1: तो आप सुनाइए, हाल चाल क्या है?
0: मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम तो ठीक है
0: जी। ठीक अभी चाहिए?
1: अब हमको तो गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बताइए।
1: घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलवेला टांगे वाला।
0: जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: आपको, पूरा रिमझिम परिवार को, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सबको सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: हेलो, हाँ
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है जी। जय भवानी।
0: जय भवानी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जय जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नसीब इम्तहान देती है मेरी, तेरी दर्द तड़प देती है मुझे, फिर से तो कभी तुम्हें दूर नहीं किया, क्यों बेवफाई का इल्जाम देती है मुझे। नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैं कमरान नसीब, फकरी सुल्तान, डिस्ट्रिक्ट सिवान से।
6: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
5: मैं भी बढ़िया हूँ, और सब बढ़िया घर में, और परिवार सब बढ़िया।
6: जी सब बढ़िया।
5: मौसम कैसा रहा गोपालगंज का?
6: मौसम तो गोपालगंज का बढ़िया बन रहा है।
5: तो धूप हो रहा है, गर्मी है अभी। मैंने
6: धूप तो हो रहा है पर उतना नहीं, कभी धूप कभी छांव।
5: हाँ नहीं, यह तो हो रहा है। अच्छा, धूप गर्मी है यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में गर्मी है। तो मुझे जो ठंडा नवंबर में चालू हुई है आपको लगता है?
6: जी अब हल्का हल्का तो ठंडा लग ही रहा है सुबह में और रात में।
5: हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। आपका रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ मैं, एग्जामिनेशन का दिया था
6: तो
5: आपको बताऊंगा कैसा आया रिजल्ट।
6: बिल्कुल, कब तक आने वाला है?
5: 26 तक आ जाएगा रिजल्ट, आता है हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरी।
6: भरोसा रखिए।
5: और बाकी सब?
6: जी जी बाकी सब ठीक है
5: और बढ़िया चलना चाहिए और क्या।
6: तो
5: हमको आज गाना सुना दीजिए।
6: बिल्कुल बता दीजिए।
5: फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला फिल्म छलिया 1960 में आई थी।
6: ओके, और गाने की दो?
5: ये गाना है दम दम दीवा दीवा मौसम दीवा दीवा ये मैं तो गिरा हाय अल्लाह, ये वाला सॉन्ग है मुकेश कुमार।
6: जी जी,
5: तो ये उसको सुना दीजिएगा और फिर आपसे मंडे को मुलाकात हो।
6: जी जी, और गाने की
5: दो? हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, डेडिकेट तो मैं भूल ही रहा था। सबसे पहले आपका बात दमदम सिद्धि थी, रानी हड़कुआ, सदीना, सब्बा सिद्दीकी, हेना हाजरा, निशा सुकुनुआ, रोशनी कुमारी, दिलीप राम, मुकेश, बरजू, भास्कर, दिवेंदर, उमा शंकर, समीर आलम, गुलाम हुसैन और अपने लोग सुन रहे हैं तो सुनाना चाहता हूँ। अख्तर ये अहमद अली, गुरियत परवीन, तो सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके नमस्कार।
6: जी नमस्कार, रेडियो रमजान में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 असम में।
1: गाना सुनना है?
0: बिल्कुल, नाम बता दीजिए।
1: नाम
0: जी, आप अपना नाम बता दीजिए।
1: साहिबा खातून कैथोलिया से बोल रही हूँ।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो मैलों से प्यारी है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी आपको और रेडियो रमजान सुनने भी सभी श्रोता को।
0: जी जी, तो आप ठीक है?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी जी, हम भी ठीक है,
1: खाना खा लेंगे।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, बहुत स्वागत है आपका 90.4 FM में। जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: तो क्या हो रहा है अभी?
4: काम हो रहा है, काम के
2: साथ। अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
4: अरिजीत सिंह का कलंक।
2: कौन सा?
4: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
2: हाँ हाँ है।
4: कलंक जा के बताऊँ क्या?
2: बिल्कुल बता दीजिए।
4: लेकिन आवाज इसे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
2: कितनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है।
4: इसे दो लाइन जा के बता रही
2: हूँ। बिल्कुल।

0: ज्यादा
1: नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो तो अभी अब अपने काम में लगी हुई है। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी? जी जी तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, बालवीर सुंदरपुर।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बहुत ही गाना अच्छे सारे का आवाज सुना दिया है, थावे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थावे वाला कोई भी खेसारी के आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशीष
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बेटा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना हई। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: हवा बनाओ तर
1: अरे करे जा हम बरसिना खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: कि हम ग्रेडे पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
9: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
10: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
0: शक्ति की आराधना, आस्था का उत्सव और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है नवरात्रि और दशहरा का पावन पर्व।
2: इसी शुभ अवसर पर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र प्रभारी जन सुराज पार्टी के श्री राधा रमण मिश्र जी ने समस्त क्षेत्र वासियों को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि का वास हो, हर चेहरे पर मुस्कान खिले और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना और प्रगाढ़ हो।
2: आइए इस पावन पर्व पर हम सभी सत्य, सदाचार और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। श्री राधा रमण मिश्र जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय विजयादशमी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश भी आपको सुनाई जा सके। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपना भी कार्यक्रम की शुरुआत करें मैसेज टाइप करने का। और मेरे पास पहला मैसेज अभी पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, आज के दिन न्यूज आप लोग नहीं चलाए। बिल्कुल न्यूज तो चला, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ऐप पर प्रसारण हमारा रुक गया था। फिलहाल अभी प्रसारण स्टार्ट हो चुका है और आप जो भी अभी के कार्यक्रम चल रहे हैं रेडियो पे, वो ऐप के माध्यम से आप कहीं भी सुन सकते हैं। यहाँ पे कुछ और मैसेज पहुँचे हुए। हेलो सर नमस्ते, शौंग खाली दिल नहीं जान भी मंगदा। इस मैसेज को करती हैं निशा बले सुकुलवान से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर जी मुझे भी सॉन्ग सुनना है, जब पहली बार दिल मेरा धड़का। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और इस मैसेज को करती हैं नीसू फ्रॉम झिरवा से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी गाने को फरमाई से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनू भैया नमस्ते, अमली नौसाद दरभंगा बजीतपुर से, और मुझे एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहले फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हम सभी पहले फरमाइश करने वाली यहाँ पे मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से है, तो इन्हीं के गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। गाने का बोल देती हैं चलिए गाने डायरेक्ट सुनते हैं हम सभी।

रेडियो रिमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कुछ से ऐसे गाने के नाम बताए गए हैं जिसके वजह से कुछ से हमें मिल नहीं रहा है, तो आपकी गाने के फरमाइश को हम नहीं पूरा कर सकते। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करती हैं निशा विलेज सुकुलवा कला से, और गाने का बोल देती हैं खाली दिल नहीं जान भी मांगता। इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

काफी प्यारा शाम रेडियो 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें, 90s के गाने का फरमाइश करें और कौन से गाने सुनने हैं उसका नाम ठीक से बताएं ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि अभी जैसे इस गाने के पहले एक हमारे श्रोता मनीषा जी की तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ था और नाम ऐसा बताया गया था कि उस नाम से और उस तरह के गाने ही नहीं मिल रहे थे और हमें लगता है कि उस तरह के गाने ही नहीं बने हुए हैं जैसे उन्होंने बताई, तो गाने को चेंज करना पड़ा। फिर अगले श्रोता की फरमाइश हम प्ले किए तो ऐसी परिस्थिति ना आए, आप डायरेक्ट उस गाने के फरमाइश करें जो आपको हम बेझिझक सुना सके और हमें मिल सके। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। इस गाने की फरमाइश करती है निशू फ्रॉम झिरवा से और गाने का बोल देती हैं पहली बार दिल मेरा धड़का, डेडिकेट बाई आपको एंड ऑल लिस्नर को। तो चलिए सुनते हैं हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण एम.डी. फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: नवरात्रि और दशहरा के इस शुभ अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
6: नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का पर्व, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, हम सभी को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
5: डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी का संदेश है, माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और दशहरा आपके जीवन से हर बाधा को दूर कर दे।
6: नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छेम 94.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696 और ध्यान रखना है कि पुराने गाने का फरमाइश करना है। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तो आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और कुछ मैसेज है उसको भी हम शामिल करते हैं। अगले गाने की फरमाइश प्ले होगी और इस मैसेज को पहुँचाने वाले नौशाद जी दरभंगा से, और गाने का बोल देते हैं क्रांति मूवी से, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं सनी पटेल दल्या से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेघनाथ माझी, सर मुझे सरगम का गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में गणेश अजय कुमार मिश्रा जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नमस्ते भैया कैसे हैं, मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम, और मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सुनो भैया क्या हाल है, मैं पलक कुमारी भिड़िया से, और गाना सुनना है छठ का गीत पवन सिंह की आवाज़ में। तो स्वागत है आपका, और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, लेकिन आपसे कहना यही है कि आप कौन से गाने सुनना है ये भी बता दीजिए ताकि आपकी पसंद के ही गाने आपको हम सुना पाए। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अस्सलामुअलैकुम सर, मैं सनम नवादा से, क्या हाल है आपका, तो बिल्कुल बढ़िया, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि नहीं बजेगा का सर, बिल्कुल नहीं बजेगा, आपके द्वारा फरमाए गए गाने हमें नहीं मिल पा रहे जिसके वजह से नहीं बजेगा। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है थैंक यू सर मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं नौशाद जी की, और सुनते हैं हम सभी।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सब रेडियो हम 94.4 FM पे कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। समीर जी के हाल चाल है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बुलेट चौधरी बढ़ेरिया थाना क्षेत्र 3 फेड़िया से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं सभी यूनिट और हमारे प्रिय श्रोताओं को, और ख़ास सोनू बाबू को। देवी माता खुश रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे, ताकि हम सभी श्रोताओं का दिल से मनोरंजन कराते रहें। जय माता दी। वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाने के लिए MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मैसेज करते हैं, तो बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए 97 जी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज करते हैं सन्नी पटेल जी दलिया से, और कहते हैं कि बहुत दिन के बाद कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ और सभी आरजे एंड सभी दोस्तों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। और संग जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटिया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और पवन सिंह की आवाज़ में ही छठ गीत की फरमाइश भी हमारे पास से किशोता पलक के तरफ से पहुंचा है, और उनसे हमने निवेदन किया कि आप गाने का नाम बता देते तो बेहतर रहता, लेकिन अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है, तो इनकी फरमाइश हम इस गाने के साथ पूरी करते हैं। पलक आप इंजॉय करें रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे, सुनते हैं हम सब

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
6: माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति की आराधना और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश लेकर आता है नवरात्रि एवं विजयादशमी का पावन पर्व।
7: इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने समस्त क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
6: उन्होंने कामना की है कि माँ दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, समाज में एकता, सद्भाव और परस्पर योग की भावना मजबूत हो तथा हर घर में खुशियों का संचार हो।
7: विजयादशमी का ये पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा देता है। श्री प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, शुभ दशहरा।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म। और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछीम 94.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे कई मैसेज हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। और लिखा गया है कि मेरा नहीं बजेगा, तो आज तो नहीं बज पाएगा। और जो भी मैसेज हमारे पास अभी जो पहुँच रहे हैं, जो अभी गाने के फरमाइश के साथ, उस मैसेज को हम गाने के फरमाइश को हम नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब उतना समय नहीं बचा हुआ है। आज बहुत सारे मैसेज पहले ही पहुंच चुके हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग छठ पूजा का, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है गुड नाइट और आपको भी धन्यवाद रेडियो रामछीम सुनने के लिए। और मैसेज करती हैं निशा शुक्लवांशा, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्नी पटेल, मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके ही सॉन्ग प्ले हुआ था और आप सुन नहीं पाए शायद, तो आप जब भी गाने को फरमाइश कर रहे हैं तो कार्यक्रम को सुनते रहें, कहीं ना कहीं आपके गाने हम प्ले कर ही देंगे, और नहीं होगा तो अगले दिन ज़रूर ही होगा यदि आपका मैसेज अपडेट होगा तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना नहीं बजेगा का, बिल्कुल बजेगा, आपके गाने बजेंगे और हमारे पास जितना समय है उतना में पूरा करने का कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक गाने हम बजा दें और आप सभी को सुना दें। इस मैसेज को करते हैं अजय कुमार मिश्रा जी गाराम गणेश स्थान माझा से, और गाने का नाम दिए हुए हैं मोहब्बते मूवी से, हम तेरे दीवाने हम आशिक मतवाले। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश अभी प्ले होगी और कुछ मैसेज है मैसेज देख ले। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई जय राम जी के, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे गाना सुनना है। गाने का बोल है चौदहवीं का चांद, फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनाना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी सुपर सॉन्ग। काफ़ी पहले मैसेज अपडेट किए थे दिलीप जी, तो चलिए हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के शॉन्ग रेडियो रेम झिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं हम सब। रेडियो रेम झिम पे कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर शॉन्ग। अरे इससे पहले लिखे हुए कि सोना भाई नमस्कार, जय माता की, कैसे हैं आप, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश किए हुए हमारे श्रोता एक हैं, जिनका मैसेज पहुँचा हुआ है। बुलेट चौधरी जी बढ़रिया से जुड़े हुए हैं और गाने का फरमाइश किए हुए हैं कि निमिया के गछिया में कौन गुनवा पौलू ए भवानी मैया, भक्ति देवी गीत की फरमाइश किए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं, इनके पसंद के गाने हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

कभी प्यारा संग रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हम सब। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सभी दोस्तों को और आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और मैसेज करते हैं दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है काफ़ी लंबा सा, और काफ़ी लंबा सा तो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। और इस मैसेज को किए हुए हैं और लिखे हुए हैं कि सोमवार की हसीन रात दोनों के नाम, दिन भर की भागदौड़ अब थम जाए, चांद की रोशनी हर चेहरे पर मुस्कान लाए, सोनू सर के शो में दोस्ती की महफिल सजे, रेडियो रिमझिम के संग हर दिल खुशी से मिले। इस मैसेज को करते हैं राघव जी आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम फटाफट प्ले करेंगे। और इस गाने की फरमाइश किए हुए हैं ब्रिज बिहारी पांडे जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है 14वीं की चांद का टाइटल ट्रैक। तो सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो MCM 94 FM सुनते हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे मेरे पास अभी कई गाने के फरमाइश के साथ मैसेज पड़े हुए हैं, और समय का समाप्ति हमारे कार्यक्रम का जो है समय वो हो चुका है, और कुछ आगे निकल रहे हैं हम, तो कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करते हैं और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक मेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है और मेघनाथ माझी जी के तरफ से सरगम मूवी से गाने का फरमाइश किया गया है, कोयल बोली दुनिया डोली। तो चलिए मेघनाथ माझी जी, आप इंजॉय करें आपके गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और फिर हम कल मिलते हैं, आप सबके बीच उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: कभी कभी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुने।
1: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी।
2: 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बात कॉल करो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम. और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ. यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं. और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
4: हेलो.
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
5: नमस्ते मैडम जी.
4: जी जी नमस्ते.
5: कैसे हैं मैडम जी?
4: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
5: मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं?
4: जी मेरा ठीक है, आप बताइए.
5: नमस्ते आपका.
4: जी आप नेहा बोल रही है ना भोरे से?
5: जी मैडम जी.
4: हाँ जी,
5: बहुत देर के बाद बात हुआ.
4: काफी दिनों बाद बात हुआ है आपसे.
5: बताना सुना दीजिए.
4: बिल्कुल.
5: महीना साल गुजर जाएंगे मेरे यार.
4: एक बार और.
5: महीना साल गुजर जाएगी मेरे यार.
4: जी जी. और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: गाना यहाँ तो जितना रेडियो रिमझिम का सुनते हैं और दोस्त सुनते हैं सबके साथ.
4: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम.
5: जी मैडम जी, गाना प्ले करने के लिए बहुत धन्यवाद.
4: जी जी.

0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
0: जी भारती जी, सर मास्टर धना से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: ठीक है आप लोग?
1: हाँ।
0: मौसम कैसा हो गया? ठंडा तो लग रहा है हल्का फुल्का।
1: जी जी, हल्का लग रहा है सुबह सुबह, और इस समय भी मौसम बढ़िया है।
0: जी जी, चलिए तो आज जुम्मा के दिन है तो यतीम मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा।
1: और गाने की बोल बता दीजिए।

0: और सबसे पहले भारती जी आपको भी और मनोरमा जी को भी और जितने रेडियो रंजन के सदस्य हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ और जितने भी श्रोता हैं सभी को
1: जी।
0: और हम लोग तो सुंदर करते हैं आपका प्रोग्राम
1: जी।
0: तो आज जुमा है तो आज 2 बजे के बाद जुड़ेंगे हम लोग, 2:30 बजे के बाद कहिए
1: जी जी। चलिए फिर,
0: और रामा जी प्रसाद बहुत ज्यादा सुनते हैं आगे से
1: जी, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन
0: जी। धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello, hello, hello.
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैडम
7: जी। नमस्कार,
8: गीत सुनना है?
7: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
8: रामायण गुप्ता पेनुला खास से।
7: जी जी, और कौन सा गीत सुनना है आपको?
8: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दी कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
7: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: हमारा शंकर भाई बाड़ा श्री ऋषिया हरपुर के, और ये हम राष्ट्रजाम गावेला प्रेमी बसारा लोग सुनी।
7: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: हेलो,
1: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
0: बात से बोल रहा हूँ आदम अली।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: क्या हाल चाल? ठीक है, आप अपना बताइए। आपका बताइए।
1: जी जी, हम सब ठीक है जी। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: नया सॉन्ग है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: गाना सबको, पूरे लिसनर को।
1: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello,
5: hello, hello, hello, hello.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है 90.4 FM में।
7: कैसन बनी जी?
8: हम से ठीक बनी रहुआ, बताई रहुआ कैसा?
7: ठीक बनी,
8: बिल्कुल चलता है, एकदम जोर शोर से चलता
7: है।
8: और सब तो ठीक बात, सुना तो नहीं रहुआ, बहुत भीड़ में बनी।
7: भीड़ में नहीं थी, होने का ये थी बात, सवारी लगा ना तो चौदह पापी ये ठीक है, जाइए। तो आज सुन में बहुत परेशान रहने, हम कोई भाती जी से बात ना हुई, जैसे हम लगाओ तो लगाओ तो लगाओ तो लगाओ 250 रुपए काम को समझ नहीं। हाँ, अब कहनी है कि 3-4 बार और लगाओ तानी लग जाए तो ठीक है। तो तब से हम परेशान रहनी है, क्या बताए हम, हो सकता था कि शुक्रवार हमारे यही लेखा चल गई।
8: एगो
7: गाना बटे देनी, गाना बाटे की पहले दिया है राजा गोरे चाम देख के काम के ना काज के भाकार का ना नाम के सब बूटेदार सारी, बूटेदार सारी ये बाटे कलपना के आवाज में बहुत बेस्ट गाना बाटे, वो कोई वो नहीं थे।
8: अच्छा जी,
7: मैंने शुरुआती में पर अभी बोल बाटे की पहले दिया है राजा गोरे चाम देख के काम के ना काज के भाकार बारा नाम के।
8: जी जी,
7: बहुत बढ़िया गाम बाटे गाना बाटे, एने कौन ऐसी नहीं थे समझ नहीं। कई गाना में सबसे पहले रानी में पड़ी हुई बानी, जितना भी सुनी सब कोई सुना दी जाये, तो अभी लास्ट पे चलता की और कॉल लगे थे भाई,
8: और कुछ कॉल बा जी, गाना और प्ले करते नहीं
7: अभी तक ठीक रखे।
8: ओके,
7: नमस्कार
8: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: जी नमस्ते,
0: क्या हाल बा?
1: मेरा हाल ठीक है, आप बताइए करिश्मा जी कैसी हैं?
0: हाँ ठीक हो नहीं, खाना वाना हो गई बा?
1: जी हो गया है।
0: आज मनोरमा दीदी कहाँ बानी?
1: ओहो के बानी, अपना काम में बानी।
0: 11 बजे से लगावत लगावत अभी ना फोन लागल बाटे। अरे फोन करे रहला हन?
1: अभी कहाँ,
0: बस लगावत लहनी हम ही कहाँ से लाग गई लताए।
1: अभी जस्ट जैसे कॉल कटा रहा वैसे रहा रही हूँ।
0: हाँ और सब बोली?
1: और सब बढ़िया बा, रुआ बताए, रुआ ठीक बानी ना?
0: ठीक बानी सामने से सब आदमी
1: जी, तो
0: गरुआ दुआ से।
1: अच्छा भगवान जी के दुआ से।
0: हाँ मान ली तरह भगवाने वाली।
1: अरे ऐसा कोनो बात नहीं है, भगवान जी के दर्जा के ले सकता गा।
0: गीत सुन एक बार हमारा।
1: बिल्कुल बता दी, कौन सा?
0: गा के बताई कि ना?
1: बिल्कुल गा के बताई, बहुत अच्छा गावे।
0: मनहर जाना मनवा के ममदा।

0: वन ई ही सुनेगा।
1: जी जी, और गाना खेल के सुनवा हूँ के बाद।
0: हाँ, सबसे पहले रघुआ के और मनोरमा दीदी के और सोनी दीदी के और दिव्या दीदी के और रानी दीदी के, उत्तम सोनी जी के, रेशमा जी के, काजल जी के, राघव जी के और बिटू प्रजापति के और गणेश कुमार के और मनीष जी सुनिहन जितना के सुनने वाला पाएंगे सब।
1: जी जी, तो और गाना प्ले करता नहीं।
0: ठीक बा,
1: सुनत रही रेडियो रमजन 90.4 FM।
0: बाय
1: बाय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। आवाज थोड़ा बहुत स्लो आवता, कट कट के आवता।
3: हेलो,
2: हाँ बोली,
3: आप सुनाता है?
2: हाँ हाँ, आप सुनाता
3: है?
2: ना ना, आज हमार बाबे
3: गाना सुना दिए मेरा।
2: बिल्कुल, बता दी कौन सा? और गाना के बोल गाना कैसे सुना
3: होगा? मनोरमा सुना होगा।

0: ना तो जाड़ा निकल जाए।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
1: सलाम भाभी मैम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसन बानी?
2: हम तो ठीक बानी, रोवा बताए रोवा कैसन बानी?
1: हम बहुत अच्छा बानी और बहुत खुश बानी। आज मेहनत सफल भइल।
2: अच्छा, फर्स्ट कॉल लागे?
1: हाँ, बहुत कम लोग के फर्स्ट कॉल लागे ला मैम, मतलब सोचिए जे लगावे ला। और हमारे फेवरेट आरजे भारती मैम के नाश्ता बनी हो गए
2: जी? हमारे तो हो गई बरुआ बताए और हो गए
1: जी मैम। अभी तो भइल टाइम देते हुए फसल लगा देने।
2: चलिए बढ़िया, अभी तो मतलब घर पे बानी
1: जी मैम? घर पे बानी, छुट्टी मनाओ तनी।
2: चलिए बढ़िया, मनाओ
1: मैम। कभी कभी छुट्टी ले लेके चाहे मैम, लेकिन घर में रह के कब को छुट्टी ले अलग मजा।
2: ठीक बात
1: जी मैम। और जैसे कि अभी पुट्टा के दिन रहला, बहुत अच्छा लगा ला। लेकिन मैम एगो बात हम जाना के, मतलब रिकॉर्ड में काटे न,
2: बिल्कुल ना काटे।
1: रानी जी बानी, उनका वजह से हम मतलब भोजपुरी बोलता नहीं, तो हमें बहुत सुकून मिलता। मतलब उनके देखा देखी पूरी बोलने को स्टार्ट करनी, हम बहुत सुकून मिलता। मतलब तो हमें भोजपुरी में बात करके आते
2: जी।
1: उनका के धन्यवाद बोले
2: बिल्कुल,
1: काहे कि मतलब सुकून जन बानो भोजपुरी में बात करके। हिंदी में ना आवेला समझ में आ गए, लेकिन गाना के सरवाइव हिंदी करे
2: बिल्कुल बता दी।
1: काहे कि ज्यादा हम भोजपुरी गाना ना सुने, ज्यादा हिंदी सुने। तो हमरा के एगो गाना सुनाई, गाना के नाम बा मनवा लागे
2: जी। जी
1: हम लोग के गाना अच्छा गाना बा,
2: काफी बेहतरीन गाना बा,
1: देखे में बढ़िया अंदाज में जुड़े के बा। सोमवार के कोशिश रही, लेकिन मनवा में खिसिया ना, लेकिन हमारे फेवरेट आरजे भारती मैम है।
2: ऐसा कोनो बात नहीं है, गुस्सा ना आवेला
1: जी मैम। तो लेकिन मैम हम अपना के बताते नहीं, हम बहुत पुराना है रेडियो सुनने वाला। जब से हमारे पास फोन हुआ तब से छोटा वाला ऐसे सुनत नहीं है पहले, अब ऐप के द्वारा सुने नहीं।
2: चलिए बढ़िया भावे, ऐप के द्वारा साफ सुनाई देला ना
1: जी मैम? बहुत साफ सुनाई देला जी मैम। तो गाना भुलाएम न, तो ये वाला बजाय
2: पर गाना क्यों के सुनेबो करेम?
1: गाना की सुना मरुआ मैम के, रुआ के, सभी आरजे के, सभी रेडियो दोस्त के एक साथ नाम लेम तो बहुत लोग बा, वैसे ऑल बोल देता नहीं
2: जी। जी तो गाना प्ले करता नहीं?
1: ओके, मैं एडवांस धन्यवाद बोलिए देता नहीं
2: रेडियो।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ring, they watch the head, don't get the hell.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते

0: हैं अगला कौन।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
1: जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे बानी?
2: हम तो ठीक बानी, रुआ बताई रुआ कैसन बानी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक बानी। तो नाश्ता इस्ता कहने है कि ना?
2: जी जी, हमारे तो नाश्ता हो गई बा।
1: अरे बाप रे, हम थक चुकल बानी, बहुत बार कॉल कइले बानी, बहुत बार।
2: अच्छा जी, अपन नाम बता देना हमके।
1: हमारा नाम फरीदा खातून, बांगरा से बोलता नी।
2: अच्छा अच्छा,
1: माने जाना था नी, पेपर पूछे नी?
2: ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं। खैर, जैसे कि मोबाइल नंबर के माध्यम से जुड़े नहीं सन, तो नंबर थोड़ा पहचान में।
1: जी जी जी जी बाजी, लेकिन बहुत लाजवाब तुम्हें बोला था, बहुत अच्छा लगा था बाजी, बहुत बढ़िया।
2: अच्छा जी,
1: आई रेंज जो चला तार चलावता नी, बहुत अच्छा लगा था। इतना ना के जानता नी, मन करता की रोज हमको बतियाते रहे और उसको हमें सुनते रहे।
2: अच्छा, इतना पसंद आओ
1: एकदम, इतना ना बोली और इतना प्यारी सी बोली लगा, तो क्या बताए सो हमने। कुछ लाइन हम बोलना चाहते नहीं?
2: बिल्कुल बोल दी।
1: बोलिए, बुरा ना माने?
2: ना ना, बिल्कुल ना माने।
1: ना बोलते नहीं, तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम पास नहीं हो फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है, तुम मानो या ना मानो, तुम मानो या ना मानो, पर हमें रोज याद तुम्हारी आती है, हमें रोज याद तुम्हारी आती है।
2: खुद को शुक्रिया है
1: जी, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरा पास तो एक दिल था, वो भी तेरे नाम कर दिया, वो भी तेरे नाम कर दिया।
2: आए आए, क्या बात है।
1: थैंक यू, अच्छा लगा?
2: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी, तब ठीक बने ना रोगा?
2: हम ठीक बने।
1: तो ये रिकॉर्ड होते ना?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो हमारा गाना सुना दी?
2: बिल्कुल बता दी।
1: गाना भोजपुरी बात गा सकते हैं ना?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बाजी।
1: ओ

0: कितना अच्छा तो गावत है नहीं।
1: अरे
0: तो कितना अच्छा तो
1: हिंदी
2: लेकिन गाना ये ना सुने एक बार हुआ।
0: हाँ स्पेशली हमने रोलवे को सुना, नाम बताया मैंने सुना लोग हिंदी सॉन्ग गाते।

0: बहुत अच्छा लगा था सुन के रुआ मुझसे। बिल्कुल एकदम, एक दिन रह के तो बात हो जाए।
1: जी जी जी जी सुनाओ चाहता नहीं, सबसे पहले तो रुआ के
0: जी
1: और कमराम जी बने, राघो जी बने और सजिया जी बने और अंजलि जी बने, रजनी जी बने, आपसा जी बने, रामदेव जी बने, संदीप जी बने, सगीर आलम जी, संतोष जी बने, नसीम जी बने और मुनर्मा दीदी बानी और सुन भैया बानी
0: जी।
1: और ये गाना पूरा सुना था, कौन बाजी थी कहिए बाजी बाजी बाजी हम कौन सका था ठीक बा
0: बिल्कुल।
1: हाँ आज जो 12 बजे जो स्पष्ट मस्ती में रही ना मैंने तभी ठीक रहता।
0: ओके तो गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो रमझिम 90.4 FM।
1: जी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: मैम गाना सुनना था।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: हेलो
0: मैम गाना सुनना था।
1: बिल्कुल, नाम बता दीजिए ना।
0: नाम गोविंदा कुमार, जलंधर पंजाब से हूँ जी। मैं तो पहली बार फोन लगाया हूँ मैडम जी।
1: नहीं नहीं, इसमें
0: जी
1: योर वॉइस के शो में जुड़ते हैं ना आप।
0: जी
1: इसलिए तो सुने, कहीं सुना सुना लग रहा है।
0: जी मैडम जी।
1: तो आज हेलो माय चॉइस में फर्स्ट बार जुड़े हैं
0: जी।
1: ओके, कैसे हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूँ जी।
1: चलिए बढ़िया है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: मुझे सुनना है वो तिरंगा फिल्म में गाना।
1: गाने की बोल बता दीजिएगा।
0: वही जो देशभक्ति गाना है जो।
1: अच्छा, तिरंगा मूवी का जो देशभक्ति गीत है वही ना?
0: जी जो नाना पाटेकर का जो है।
1: हाँ है
0: जी वही।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सबसे पहले आपको और विजय सर को और अजय सर को और सनु सर को और विकास सर को और रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
0: ओके मैडम, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो मैम, नमस्ते।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
5: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं रेडियो रिमझिम का इंतजार।

0: करते हुए मैम फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया मैम।
1: तो आप अपने गाने की फरमाइश बता दीजिए।
0: ये गाने के बोल है, जब जब प्यार में पहरा हुआ प्यारा और गहरा हुआ है, और सुनवाएंगे कितने रेडियो जिन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
1: ओके जी, तो आपका गाना हम प्ले करते हैं
0: जी। धन्यवाद मैम।
1: 91.4 FM।

0: हेलो
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसे हैं मैम?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तब नाश्ता हो गया आपका?
0: जी जी नाश्ता हो गया। अपना नाम मेंशन कर दीजिए।
1: जी जी बता रही हूँ, हम फरीदा खातून बांगड़ा से बोल रहे हैं।
0: जी जी
1: बताइए और सब ठीक है?
0: हाँ हाँ
1: तो गाना बज जाएगा?
0: बिल्कुल बजेगा, बता दीजिए कौन सा।
1: हिंदी हिंदी की भोजपुरी?
0: आप कोई भी गाने की फरमाइश कर सकती हैं, बस गाना अच्छा होना चाहिए।
1: जी जी जी जी आपने नाम बता दीजिए हमको भी।
0: मेरा नाम भाभी है।
1: थैंक यू मैम। गाना कब बोले हमारा की?

0: ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये गाना है ना?
1: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा ले रही हैं।
0: थैंक यू। कहाँ गाना गाते हैं?
1: नहीं, इतना तो अच्छा गा के सुनाई अभी,
0: मैंने मन खुश हो गया ना सुन तो।
1: जी जी, काफी बढ़िया लगा सुन के।
0: थैंक यू मैम, तय दिल से। तो सुनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको
1: जी,
0: और रजनी जी है, अंजलि जी है, और रामदेव जी है, नसीम जी है, और संदीप जी है, और विमलेश जी है, और आशा जी है, और जितना मतलब रिमझिम जितना दोस्त हमारे सुन रहे हैं लोग, उन सबके लिए है। लेकिन बजेगा ना?
1: जी कल बजेगा।
0: अच्छा, सुबह में कि शाम को?
1: शाम को, और सुबह में भी रिपीट होता है, शाम को तो मतलब शुरू हो जाता है।
0: जी जी जी, चलिए तो ठीक है। तो सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैडम
6: जी। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना।
7: साकिर नाम से बोल रहे हैं, थारा के लग से।
6: अच्छा अच्छा,
7: बोलिए, खाना खा लिए हैं मैडम?
6: जी जी, आपका हो क्या है?
7: हाँ, हम भी खा लिए हैं।
6: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
7: आए?
6: कौन से गाने की फरमाइश से बता दीजिए।
7: चावन मजा न दे, एक ही गाना सुना है।
6: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
7: सबसे पहले आपको।
6: जी जी,
7: और जितना सुन ले आने होंगे सबको।
6: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
7: ठीक है,
6: ओके।

0: हेलो
1: हेलो सलाम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी हमारे भारती मैम को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी
1: बहुत दिनों इंतजार करते हुए और आज बात भी हो गई। कभी कभी आप गायब हो जाते हैं ना मैम।
0: नहीं गायब नहीं है, हम भी यहीं पे हैं।
1: हमको लगा हम लोग से आप गुस्सा हो गए हैं कि बस रिकॉर्ड कर रही है।
0: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको जो काम मिलता है वो करते हैं।
1: वो तो बात सही है मैम। और मैम सब और सब बताओ, खाना पीना हो गई?
0: हाँ हाँ खाना पीना हो गया। वो बताइए और हो गई?
1: हाँ हो गई, बस कुछ भुला जाता नहीं कब कब की भोजपुरी में बोले कर।
0: ना ना कोनो बात ना, भोजपुरी में बोले हिंदी में दोनों में बात हो सकता।
1: काहे कि बहुत दोस्त लोग सुने ला लो रिकॉर्ड कर ला लो तो सुन ले बानी भोजपुरी में अच्छा लगे ला। जैसे कि रानी जी को जैसे हम सीख गई बानी की भोजपुरी में बोली अच्छा लगा था बहुत ज्यादा शो में।
0: अच्छा
1: और उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त के अच्छा लगे। और मैम तो बहुत लेट हो गई बा,
0: थोड़ा सा लेट पड़ बा,
1: सोचनी है की अभी ना लगी तब लास्ट में लगा में की बात।
0: चलिए कोनो बात ना,
1: आज उतना मेहनत ना करनी है मैंने 22-23 को कॉल लगाने तो लग गई ला
0: 22-23 को।
1: हाँ और वो दिन एक दिन तो 300 पार हो गए तब लागल।
0: बता दी कौन सा
1: हम जाके परवाना मूवी से गाना सुनाई।
0: बता दी
1: और गाना के बोल बा प्यार तो होता है प्यार, ये वाला गाना बा।
0: और गाना के ऊपर सुनाऊंगी बा।
1: गाना मैम अभी तक गाना सुना वाला सभी रेडियो सुनी जी अभी सुना था। और टाइम मिला ला ना फिर भी कहीं जाते हुए मतलब सफर में ही हम कॉल कर देनी और गाना फरमाइश करे खातिर। रेडियो से इतना लगाव मानू मैम की क्या करी मतलब कहीं भी रहनी तो हाथ ऑटोमेटिक जाला। अब समझ सको तनी की इस शो से कितना लगाव बा।
0: बात तो बिल्कुल सही बा, लगाव बा तभी तो।
1: जी मैम हमारा के बहुत लोग गांव के कहला कि रेडियो में का बा के जमाने में। हम कहे ना जन एक नशा बा तन अलगे बा। और कहला लोग यूट्यूब से मिल जाये सॉन्ग सुन ला। हम कहे ना अमेजन सुनने के बात बता अलग बात बा। और मैम रघु बात की मानता नहीं की ना?
0: बिल्कुल माना था नहीं।
1: काय की रहो तो आरजी हमें रहो तो और माने। और गाना का प्ले करते मैम तो आज तो नहीं बाजी मन चलिए आज।
0: हाँ हाँ कल बाजी रहो।
1: चलिए मैम तो इंतजार में रही रहो के अंदाज में 5-6 दिन हो गए सुन ले। चलिए मैम तो गाना प्ले करी एडवांस धन्यवाद।
0: ओके और गाना प्ले कर जानी सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ओके मैम बाय
0: बाय।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
4: बहुत
5: स्वागत है आपका 90.4 FM में।
6: नमस्ते, कैसी हैं?
5: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: तो क्या हो रहा है अभी?
7: काम हो रहा है, काम के लिए।
5: अच्छा जी, चलिए तब तो बढ़िया है। तो इसी के साथ बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है।
7: अरिजीत सिंह का कलंक सॉन्ग।
5: कौन सा?
7: कलंक। कलंक मूवी नहीं है अरिजीत?
5: हाँ हाँ है।
7: कलंक, कलंक जा के बताऊँ क्या?
5: बिल्कुल बता दीजिए।
7: लेकिन आवाज इससे तो अच्छा नहीं जा रहा है।
5: कितनी खूबसूरत तो आवाज आ रही है।
7: इसे दो लाइनें गा के बता रही
5: हूँ। बिल्कुल।

0: जी, काफी बेहद खूबसूरत गा रही हैं और बोल रही हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है।
1: नहीं
0: नहीं, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो
1: मजा रहा है।
0: तो अभी अब अपने काम में लगी हुई है। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी? जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, बालवीर सुंदरपुर।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: बहुत ही गाना अच्छे सारे की आवाज सुना दिया है, थारे वाला।
0: गाने की बोल बता दीजिएगा।
1: थारे वाला कोई भी खेसारी की आवाज में।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: अमन अशी सॉन्ग लव अजीत अंगा।
0: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जा, तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना हई, आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: बनाओ तर
1: अरे करे जा हम बरसिंगा खाली गर्जे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
2: हम संतोष पागल नहीं।

0: कहूंगा कि हम ग्रेड ए पोल नहीं, पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।